नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की

उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 6:55 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र सङ्घलोकसेवायोगस्य शताब्दी समारोहे सहभागं करिष्यति। सः अस्मिन् अवसरे आयोजितं कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति। अयं कार्यक्रमः विगतवर्षस्य अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनांकात् प्रारब्धानां आवर्षं यावत् प्रवर्तमानानां समारोहाणां समापनसूचकः भविष्यति। 26-1900 वर्षे संघलोकसेवायोगस्य स्थापनायाः शतवर्षपूर्त्यवसरे एतस्य समारोहस्य आयोजनं भवति। श्रीमोदी संघलोकसेवायोगस्य शताब्दी स्मारक नाणकम् अथ स्मारक प्रैष्य चटिकाञ्च प्रख्यापयिष्यति तथा 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन इंडिया इति नामना एकस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि करिष्यति। मंत्रिमंडलस्य आर्थिक कार्य समित्या ह्यः अग्रिम वित्तीय वर्षस्य रवि विपणन सत्रस्य सर्वेषां सूचितानां सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धयितुं अनुमोदनं प्रदत्तम्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् संबोधयन् उक्तवान् यत् कृषकेभ्यः तेषां कृष्युत्पादानां लाभकरं मूल्यं सुनिश्चेतुं निर्णयः अयम् गृहीतः।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 75.6 रूप्यकाणां, सर्षपस्य 13.4, चणकस्य 83, गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मितं परिवर्धनं विहितम्। एतदतिरिच्य मंत्रिमंडलेन हरितोर्जा वीथि इत्यस्य तृतीय चरणं अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता, येन राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च 35.1 गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीयोर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य तटीय कर्णाटक, केरलम, माहे, आंतरिक कर्णाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु विद्युत गर्जनेन सह प्रबल वृष्टिः पूर्वानुमानिता। ऋतु विभागेन अद्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा प्रदेशेष्वपि समानैव ऋतु परिस्थितयः प्रवर्तिष्यन्ते इति संभावना अभिव्यक्ता। विभागेन उक्तं यत् रायलसीमा, आंतरिक कर्णाटक, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय प्रदेशेषु अपि विद्युत गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य च संभावना अस्ति। जापान देशे प्रवर्तमानासु एशिया क्रीडासु भारताय ह्यः अद्यावधि सर्वाधिकः सफल दिवसः अभवत्। भारतेन 4 सुवर्ण पदकानि प्राप्तानि। अनेन भारतस्य पदक संख्या आहत्य 6 अभवत्, यस्मिन् 10 सुवर्ण पदकानि, 21 रजत पदकानि तथा 39 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। महिलानां

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपी की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में

0: उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
1: आयुष्मान भारत पीएम जय,
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जिद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
4: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन

0: नमूना है।
1: ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
2: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
3: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा यह कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
2: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
4: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा, वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज संभावना है, इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
4: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
4: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम रेलकरी सुनाइलो आकाशवाणी दिल्लीरो आकाशवाणी बारिपदा प्रचार करुछु गीतांजलि गीतांजलि संगीतमय परिवेश को श्रोता बंधु मानक स्वागत करुछि नलिन प्रभा नंदी। परस्पर को आमे भल पाऊ परस्पर पई सबु किछि करि पारु आमे गोटिए परिवार हाँ बंधु पारिवारिक सुख जहाँ बांधि रखिछि समस्त को एई पारिवारिक सुख लालसा को आमे छाड़ी पारिबा नाही। କେମିତି ଛାଡ଼ିପାରିବା କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି।

0: हाँ भाई क्या रे चालो हो
1: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो
0: ओहो माने कथा टिके फिटेई के कहो
1: माने सिनी आ उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक आ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घासकटा यंत्र पेट्रोल डीजल किरोसिनी पंप सेट रे 10000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेठे सब रकम सुविधा मिलुची
0: केठे मिलुची हो एते सुविधा
1: जानिन किहो बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
2: ठिकणा होची मेसर्स बाबूलाल अग्रवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनकुनिया छक बारीपदा
0: ताला जीबा ना की कहउचो
1: चलो
3: प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानते कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतार मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात उपरे सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 18003456718 किमा 1912 रे जोगाजोग करंतु
4: चासी भाई ओ भोनी मानक पई जरूरी सूचना राज्यर समस्त पैक्स लैंप्स एवं खुचरा विक्रय केन्द्र गुड़िक यूरिया डीएपी एमओपी समेत समस्त प्रकार सार पर्याप्त परिमाण में महजूद रही राज्य में सारर कौन अभाव ना तेणु अजथा भयभीत न हो कि आगुआ अधिक सार महजूद नक केवल फसल वर्तमान आवश्यकता अनुजाई सार क्रय करंतु एथिपाई निज आधार कार्ड देखा पीओएस मेसीन मध्यम सरकारी धार्य मूल्य सार क्रय करंतु एवं निश्चित भाव रसीद संग्रह करंतु गुजबरे विश्वास करंतु नाही सार कलाबजारी को रोकंतु मां माटी रा सुरक्षा पाई जैविक सार प्रयोग करिबा पाई भूलंतु नाही कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिसा सरकार

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का दिन एक बार और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज है श्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि। अब ये वीर चंद्र गढ़वाली जी कौन थे? ये एक ऐसा नाम है जिसने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्म लिया और अपने निर्भीक और स्वाभिमान स्वभाव के कारण इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना बड़ा सारा योगदान दिया। अब इनका जो पहली जो भर्ती हुई वह ब्रिटिश सेना के रॉयल गढ़वाल राइफल्स में हुई। यहां पर उन्होंने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। गढ़वाली यह नाम इतिहास के पन्नों में इस तरह से अमर हो गया क्योंकि इस नाम ने पेशावर कांड के नाम से इस नाम को जाना जाने लगा। यानी 23 अप्रैल 1930 की उस तारीख के साथ नाम है पेशावर कांड। पेशावर का वह किस्सा अख्वानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार के साथ निहत्ते शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय ब्रिटिश कैप्टन के रिकेट ने गढ़वाल राइफल्स को निहत्ते सत्याग्रहियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का एक आदेश दे दिया। उस समय हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली अपनी जान और भविष्य की परवाह किए बिना बड़ी कड़कती आवाज में उन्होंने चिल्लाया और हुक्म दिया, गढ़वाली सीज फायर। गढ़वाली हम निहत्थों पर गोली नहीं चलाते। सैनिकों ने उनकी बात मानी और बंदूकों की नाल को नीचे कर लिया। ऐतिहासिक इनकार के बाद ब्रिटिश हुकूमत को तो उन्होंने हिला दिया। इसके बाद उन पर कोर्ट मार्शल चला, उम्र कैद की सजा हुई, 14 वर्ष उन्हें जेल में बिताने पड़े। बाद में महात्मा गांधी ने उनकी निष्ठा और साहस से प्रभावित होकर कहा था, यदि मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता तो देश कब का स्वतंत्र हो गया होता। 1 अक्टूबर 1979 को राष्ट्र का यह महान सपूत चिरनिद्रा में लीन हो गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली केवल एक फौजी नहीं बल्कि विवेक और राष्ट्र प्रेम के वो प्रतीक थे जिन्होंने सिखाया कि देशभक्ति के प्रति निष्ठा किसी औपनिवेशिक हुक्म से बड़ी होती है। उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें सादर नमन करता है।

0: माने जिसे संगीत पद किया, हमने जिस फिल्म में इसे लिया गया है वह फिल्म है रंग दे बसंती। आइए सुनते हैं ये एक संदेश।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियां और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। अब चित्रलोक में वक्त है कि एक कहानी छोटी सी आपके साथ साझा की जाए। कि एक समय की बात है, बहुत धनी और जिज्ञासु राजा थे, तो उनकी एक आदत थी कि वो परीक्षाएं लिया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया और वह वहीं एक दूसरे पत्थर के पीछे छिप गए अपने मंत्रियों के साथ में, ये देखने के लिए कि उस विशाल पत्थर के आसपास से गुजरने वाले निकलने वाले लोग क्या करते हैं। अब वहां से कई लोग निकले तो सबसे पहले कुछ धनी व्यापारी और दरबारी निकले, उन्होंने पत्थर को तो हटाया नहीं और अगल बगल से निकल गए। और थोड़ी देर के बाद में वहां से निकले कुछ ऐसे लोग जो सामान्य थे, तो उन्होंने बड़ी गुस्सा किया, बड़ा गंदा गंदा बोला। उन्होंने कहा, बड़ा खराब राजा है, इतना बड़ा पत्थर रखा है, इसे भी नहीं हटवा सकता। क्या काम का राजा है, क्या काम के दरबारी हैं, बस हमसे तो कर लिया जाता है, हम कर दिए रहते हैं पर काम कुछ नहीं होता। राजा ने इस बात को भी सुना और उसके बाद में पर किसी ने पत्थर नहीं हटाया। अब थोड़ी देर के बाद में एक किसान वहां से निकलता है। उस किसान के हाथों में बहुत सारी सब्जियां हैं जिसे वह बाजार लेकर जा रहा है बेचने के लिए, लेकिन वह देखता है बीच में एक बड़ा पत्थर है। वह उस पत्थर को हटाने के लिए अपने हाथ की सब्जियां पहले नीचे रखता है और उसके बाद उस पत्थर को हटाने लगता है। पत्थर हटाने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि बड़ा पत्थर है, पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन उस पत्थर को धीरे धीरे करके वह लुढ़काकर सड़क के उस ओर रख देता है। और जैसे ही वह पत्थर हटाता है, उस पत्थर के नीचे उसे एक थैला मिलता है और उस थैले को खोलते ही वह पाता है कि उसमें कई सारे सोने चांदी के सिक्के रखे हुए हैं और वह खुश हो जाता है। तभी उसे एक चिट्ठी भी मिलती है और उस चिट्ठी को जैसे ही वह पढ़ता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है क्योंकि वह चिट्ठी सामान्य चिट्ठी या सामान्य पत्र नहीं था, राजा के द्वारा दिया गया पत्र था और उसमें यह लिखा था कि आपने इस सम्मान को चुना है क्योंकि आपने देश की बाधाओं को हटाने का प्रयास किया है, तो राष्ट्र देश आपके लिए सम्मान रखता है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे पत्थर हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे शहर में, कभी कभी हमारे देश में मिलते हैं और हम उन्हें हटाने की बजाय उनसे ही लड़ बैठते हैं। विचार कीजिएगा, हमने कितने पत्थर हटाए, इस बात का विचार करना है ताकि राष्ट्र सुरक्षित हो सके। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: लेते एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में हमने सुनाई आपको एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी कोई छोटा बड़ा पत्थर हमारे रास्ते में आए तो उसे हम खुद हटा लेंगे, ना कि हम दूसरों को उस बात के लिए कोसेंगे, है ना। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत भाग मिल्का भाग फिल्म से, श्रेया घोषाल और जावेद बसीर ने इसे गाया। प्रसून जोशी के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत है। हम आज का दिवस यानी 1 अक्टूबर का दिवस बड़ी प्रसन्नता के साथ मना रहे हैं, क्योंकि आज एक और बड़ा प्यारा सा दिवस है, वह है मिलिट्री नर्सिंग दिवस। और आज

हुई थी मिलिट्री नर्सिंग की स्थापना। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की स्थापना का दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 1926 को भारतीय सेना के तहत एक स्थायी नर्सिंग सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी, जिसे उस समय इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का नाम दिया गया था। यह इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 1 अक्टूबर 1926 से आरंभ हुई। इसका आदर्श वाक्य है सर्विस विद अ स्माइल, यानी मुस्कुराते हुए अपना कार्य करना। महत्व की बात यह है कि भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी और पूर्णतः महिला अधिकारी कोर में से एक संस्था यह है, जो युद्ध में और शांति में दोनों समय सैनिकों और उनके परिवारों की चिकित्सा की सेवा के लिए समर्पित रहती है। तो हमारी ओर से मिलिट्री नर्सिंग दिवस पर मिलिट्री नर्सिंग दिवस में काम करने वाली प्रत्येक महिला को, अब तो पुरुष भी उसमें होंगे, उन सभी को बहुत सारी बधाइयां और धन्यवाद सेवाओं के लिए।

हम सुन रहे थे ये गीत द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से एआर रहमान सुखविंदर सिंह की आवाजों में समीर के बोल और एआर रहमान के संगीत के साथ। हम लोग कई बार कई लोगों को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इंसान, इसका व्यवहार ऐसा ही होगा और इसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये गरीब ही होगा। अब एक छोटी सी घटना घटी कि एक बालक का आइसक्रीम लेने के लिए गया और वहां पर पहुंचा तो उसने पूछा कि सबसे सस्ती आइसक्रीम कौन सी है, तो उसने कहा 50 रुपए वाली। अब ये जो महिला थी वो उसको आइसक्रीम देने के लिए खड़ी हुई, तो उसने कहा कुछ और है जो इससे सस्ता है, तो उसने कहा हाँ एक 35 रुपए वाली है। इस बार उसका रवैया थोड़ा कड़क था और उसने उस कड़कता के साथ उस बालक को कहा हाँ 35 रुपए की है, चाहिए तो लो नहीं तो जाओ यहां से। उस बालक ने चुपचाप उस आइसक्रीम को ले लिया, आइसक्रीम ले

रहा है, खा रहा है, वो महिला उसे देख रही है और बार बार थोड़ा चिढ़ भी रही है, लेकिन उस चिढ़न के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाता है। कारण, जब वह बालक उस महिला को उस आइसक्रीम का पैसा देने आता है तो वह उसे 50 रुपए ही देता है, कहता है 35 रुपए आइसक्रीम के और 15 रुपए हमारी तरफ से आपके लिए। वह महिला निशब्द हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती है। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी को जज ना करें, कभी किसी को किसी की बात किसी को लेकर निर्णयात्मक रूप से ना पहुंचे, पहले समझें, जानें, विचारें। आज के चित्रलोक में बस इतना ही, आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे दम लगा के हैशा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज में वरुण ग्रोवर के बोल और अनु मलिक के संगीत के साथ यह गीत आज्ञा दीजिए। कार्यक्रम चित्रलोक से नमस्कार।

भारत का सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: Asian Games 2021 Aydın'da bu ya.
1: Welcome to all the listeners of Akashvani. मैं हूँ साक्षी पांडवाल और मेरे साथ है यहाँ मौजूद धर्मेंद्र जी. और दोस्तों हम लेकर आ गए आपके लिए the ongoing Asian Games 2026 के live updates. घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम पहला अपडेट आज आपको जो देने वाले हैं वो है सेपक तकरो की दुनिया से. इंडिया हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द मेंस क्वाड्रेंट इवेंट ऑफ सेपक तकरो आफ्टर देयर टू स्ट्रेट विक्ट्रीज इन द ग्रुप स्टेज. दिस मीन्स दैट इंडिया हैज अशोर्ड और बीन अशोर्ड ऑफ अनदर मेडल for our country at the Asian Games 2026. India defeated Vietnam in the men's quadrant group A match of the Sepak Takraw event. They won in straight sets by a margin of 15-12, 15-17, thereby defeating Vietnam 2-0. The rules, by the way, dosto aapko ye bhi bata dete hain, the rules state that both the semi-finalists will get a bronze medal at least. That means, Dharmendra, Bharat ko ek aur medal aaj assure ho chuka hai.
2: Ji, aur udhar kushti se to kafi achhi khabar aa rahi hai. साक्षी, भारत के नितेश शिवाज ने पुरुषों के ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बना ली है और भारत का मेडल वहां पर पक्का हो गया है. उन्होंने होंगजो एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंगोलिया के गंगकुयाग कानाबातार को 9-0 से हराया. इस जीत के साथ नितेश ने फाइनल में जगह बना ली और इसी के साथ भारत का 2026 एशियन गेम्स में कुश्ती का पहला मेडल पक्का हो गया है. नितेश ने इसी साल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था. फाइनल में उनका सामना ईरान के मेहदी बालिहाम जेहदे या जापान के यूरी नागाचातो से होगा. फाइनल आज के बाद खेला जाएगा और हम आपको ये भी बताएं कि पहली बार 64 साल के बाद ग्रीको रोमन किसी रेसलर ने एशियाड के फाइनल में जगह बनाई है. और कुश्ती से ही एक और अच्छी खबर तो थी लेकिन अब थोड़ी सी उसमें गड़बड़ ये हो गई है कि मानसी अहलावत सेमीफाइनल में तो पहुंची थी लेकिन सेमीफाइनल में पराजित हो गई है. भारत की मानसी अहलावत महिला 62 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जापान की दो बार की वर्ल्ड चैंपियन नोनोका ओजाकी से 0-6 से हार गई. ओजाकी ने शुरुआत में टेकडाउन से 2 अंक लिए और फिर एक और टेकडाउन की बढ़त से 4-0 स्कोर कर दिया. उन्होंने दूसरे पीरियड में भी मानसी को अंक नहीं दिया. बाद में एक और टेकडाउन से स्कोर 6-0 कर दिया. मानसी अब रेपेचेस में खेलेंगी. यह जीतने पर वो ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती है.
1: जी, और अब वॉलीबॉल का आपको अपडेट देते हैं जहां से मैं आपको कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं देने वाली हूं, जहां पर हम आपको बता सकते हैं दैट पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया 3-0 इन द मेंस वॉलीबॉल क्वार्टर फाइनल टू एंड इंडियाज कैंपेन एट द एशियन गेम्स. पाकिस्तान टुक द ओपनिंग सेट 25-19 बिफोर एजिंग अ क्लोजली फॉट सेकंड सेट 25-23. देन दे क्लोज्ड आउट द कॉन्टेस्ट विद एन 80-25 ड्रॉ, रादर शुड वी से, दैट रिजल्टेड इन पाकिस्तान कंप्लीटली डोमिनेटिंग इंडिया इन अ स्ट्रेट सेट विक्ट्री. इंडियाज वेट for the first Asian Games medal in the men's volleyball since 1986 continues after the quarterfinal defeat.
2: और एक खबर, जैसे आपने कहा कि अच्छी खबर नहीं है, स्क्वाश में भी हमारी महिला टीम पराजित हो गई है और सेमीफाइनल का ये मुकाबला था हांगकांग के खिलाफ और भारतीय टीम इस मुकाबले में संघर्ष करती तो दिखी लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी. तन्वी खन्ना ने स्क्वाश महिला टीम इवेंट के सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ भारत की वापसी कराई. उन्होंने वर्ल्ड नंबर 33 ली काई को 3-1 से हराया. उनकी जीत से भारत ने 1-1 की बराबरी हासिल की. तन्वी ने पहला गेम 4-11 से गंवाने के बाद वापसी की. उन्होंने अगले 3 गेम 13-11, 11-9, 13-11 से जीते. इससे पहले चान सिन युक ने अनहत सिंह को 3-2 से हराया. स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा और जोशना चिरप्पा को निर्णायक मुकाबला खेलना था लेकिन वहां वो पराजित हो गई.
1: जी, एंड अ क्विक अपडेट फ्रॉम आर्चरी वेयर वी हैव चिकिता तानीपार्थी ओपनड द इंडियाज एक्शन ऑन डे 13 ऑफ द एशियन गेम्स 2026. हाउएवर शी कंपीटेड अगेंस्ट नूरिसा दिया अशरीफा इन द क्वार्टर फाइनल ऑफ द वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी. शी हैज ऑलरेडी क्लिंच्ड 2 गोल्ड मेडल्स एट द इवेंट एज पार्ट ऑफ द मिक्स्ड टीम एंड वुमेन्स टीम रेस्पेक्टिवली, बट शी डिड नॉट लुक एट अ बेस्ट टुडे एज अ सीरीज ऑफ 9s एंड 1-8 इन द फाइनल राउंड कुड ओनली टेक अ फाइनल स्कोर टू 43. As a result, we saw her crashing out of the Asian Games 2026 today. However, on a much more brighter and nicer note, she should be proud of her performance, having already secured 2 gold medals.
2: और एक अच्छी खबर आ रही है, बहुत ही अच्छी खबर है. भारत ने रजत पदक जीत लिया है सेलिंग में और ये जो

0: रजत पदक है वो स्किफ इवेंट में मनु और नोबेल ने दिलाया है, बहुत बढ़िया खबर है साक्षी।
1: ऑफ कोर्स गुड न्यूज़ देयर एंड कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम, बट क्रिकेट की दुनिया से भी धर्मेंद्र एक क्विक अपडेट अपने दोस्तों को बता देते हैं कि आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा कर अपनी जगह गोल्ड मेडल के लिए फाइनल के अंदर तय कर ली है। यस, इन व्हाट वाज अ रेन अफेक्टेड मैच एंड अ शॉर्टेंड सेमीफाइनल वी सॉ बांग्लादेश सेटिंग पाकिस्तान अ टारगेट ऑफ 112 फ्रॉम 13 ओवर्स व्हिच पाकिस्तान वाज एबल टू चेज डाउन confidently and easily by a margin of 6 wickets with 9 balls to remain. And और एक बड़ी न्यूज जो है धर्मेंद्र वो ये है कि आज भारत और श्रीलंका भी आमने सामने होने वाले हैं दोस्तों इन द सेमीफाइनल मैच, एंड whoever wins this game will book a place for themselves in the final and will be meeting Pakistan in the final of the Asian Games 2026.
0: जी, और अगली अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
1: जी जरूर, 10:30 बजे आपको मिलेंगे हम एक बार फिर से विद द नेक्स्ट अपडेट। फॉर नाउ इट्स गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी हो या

0: एक बंगाली धोती ढीली ढाली, रास्ते में मिला एक बंगाली, दर्शन का अभिलाषी। वो कहने लगा
1: क्या?
0: वो कहने लगा जल खोबे रसोगुल्ला खोबे, और कहने लगा अम्मी तुम्हें भालो बासी।

बीच में एक समय ऐसा भी आया जब सचिन देव बर्मन का मुंबई के फिल्म जगत से मोह भंग हो गया था और वो कोलकाता वापस लौट जाना चाहते थे। शुक्र है ऐसा नहीं हो पाया और सचिन देव बर्मन मुंबई में ही रुक गए भविष्य की कालजयी धुनों के निर्माण

देव आनंद अभिनीत नवकेतन की जिन अन्य मशहूर फिल्मों में सचिन देव बर्मन ने संगीत दिया उनके नाम हैं टैक्सी ड्राइवर, 9211, काला पानी, मुनीम जी और पेइंग गेस्ट।

देव आनंद और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म काला बाजार में भी सचिन देव बर्मन ने सुमधुर संगीत दिया। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: खोया खोया क्या।
1: फिल्म गाइड, देव आनंद और वहीदा रहमान के शानदार अभिनय, विजय आनंद के कसे हुए निर्देशन, शैलेंद्र के गीतों और सचिन देव बर्मन के सुरीले कालजयी संगीत के लिए आज भी भारतीय सिनेमा की अग्रणी फिल्मों में शामिल है।

0: भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार बिमल रॉय के साथ भी काम करते हुए सचिन देव बर्मन ने अपने संगीत सृजन की यादगार मणियों का योगदान दिया। ये फिल्में हैं देवदास, सुजाता और बंदिनी।
1: ओरे माझी

रूपांतर में सचिन देव बर्मन ने बरस दर बरस देव आनंद अभिनीत कुछ और फिल्मों के लिए तैयार किया अपना मधुर संगीत। ये फिल्में हैं बम्बई का बाबू, तेरे घर के सामने, तीन देवियां, ज्वेल थी

सन 1969 में आई सचिन देव बर्मन के संगीत से सजी फिल्म आराधना, इसी फिल्म से उदय हुआ राजेश खन्ना के रूप में भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार।

1970 के बाद के दौर में भी सचिन देव बर्मन के सुरीले संगीत से सजी कई फिल्में आईं। इन फिल्मों के नाम हैं तेरे मेरे सपने, शर्मिली,

नगर, सगीना, चुपके चुपके, सजा, नौजवान, बाजी, हाउस नंबर 44, 16 साल, लाजवंती, चलती का नाम गाड़ी, बात एक रात की, डॉक्टर विद्या, जिद्दी, इश्क पर जोर नहीं, नया जमाना और गैम्बलर। 31 अक्टूबर सन 1975 को मुंबई में सुरों के इस साधक ने अपनी अंतिम सांस ली।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन पर। आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी होगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे।

0: मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DAD के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकीय पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इससे व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए MSP में 390 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रुपये प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। न्यायाधीश MM सुंदरेश और PV वराले की खंडपीठ ने संकेत दिया कि दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय की सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। दुबई से इसराइल के तेल अविव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: और बहुत महत्वपूर्ण शख्स थे वहाँ, जो उसके निर्देशक थे, क्षितिज रंग शिविर नाम था उस संस्था का, उसके जो निर्देशक थे वो राम हृदय तिवारी। उनको जब मालूम पड़ा कि मैंने बहुत पहले स्कूल छोड़ दी है और मेरी पढ़ाई लिखाई उस तरह से औपचारिक है नहीं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम ठीक है स्कूल छोड़ गई कोई बात नहीं, स्कूल से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। स्कूल का जो पाठ्यक्रम हो तो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, लेकिन स्कूल के बाहर ज्ञान की बहुत बड़ी दुनिया है।
4: क्या बात है।
3: तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी का सदस्य बनाया।
4: अच्छा।
3: और वो ये कहते थे कि तुम अखबार रोज पढ़ो और अखबार में संपादकीय को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए खबरों के अलावा।
4: जी, जी, जी।
3: फिर वो बहुत सारी पत्रिकाएं मुझे ला कर देते थे और उस तरह से पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ी। फिर जब वो एक संपादक के नाम पत्र नाम का एक कॉलम आता था देशबंधु नाम के अखबार में, एक बार मैंने उसमें एक चिट्ठी लिखी। एक बिल्कुल सामान्य जो पाठक होता है अखबार का, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो किसी मोहल्ले की किसी समस्या पर एक छोटी सी मेरी चिट्ठी थी और थोड़ी लंबी हो गई थी।

0: सब जानते हैं, मैं लंबी कहानी का लेखक हूँ, वो चिट्ठी भी लंबी हो गई थी। वो चिट्ठी तिवारी जी ने पढ़ी तो बोले, ये जो तुमने जो लिखा है उसमें कहानी है, यानी वो सिर्फ एक खबर नहीं है, चिट्ठी नहीं है, तुम्हारा लिखने का जो ढंग है उससे ऐसा लगता है कि तुम कहानी लिख सकते हो।
1: अच्छा,
0: तो पहली बार ये कोई प्रेरित करने वाला आदमी मिला जिसने कहा कि तुम कहानी लिख सकते हो। फिर मैंने कोशिश की लिखने की कहानी, और पहले बहुत कहानियां पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं कुछ अलग हिट लिखना है। तो दफन कहानी जो लिखी मैंने वो 3 साल में लिखी,
1: 3 साल में।
0: मैं ये चाहता था कि पहली कहानी जो आए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आए।
1: क्या बात है।
0: और उसमें बहुत मैंने मेहनत की, उसके बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं जा करके लोगों से मिलता था। उसमें कब्रिस्तान का दृश्य है, तो कब्रिस्तान में क्या होता है, उसमें जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है,
1: क्या बात है,
0: ये सब जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं कब्रिस्तान जाता था और वहाँ के जो नमाज पढ़ाते जो थे उनसे मिलकर के फिर मैंने उनसे लिखित रूप में लिया, ये इस समय ऐसा पढ़ा जाता है, इस समय ये कलमा पढ़ा जाता है, उस तरह से वो कहानी बनी। शुरुआत इस तरह से हुई।
1: इतनी रिसर्च करनी चाहिए।
0: मैं रिसर्च उस तरह से, देखो मैं मतलब पढ़ करके, किताबें पढ़ करके या इंटरनेट से या इस तरह से चीजों से रिसर्च नहीं करता, लेकिन मैं मौके पर जाता हूँ और वहाँ भले मैं किसी रिपोर्टर की तरह नोट ना लूं, लेकिन उस माहौल में जाकर के गहरी सांस लेना भी काफी होता है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: उससे वो पूरा माहौल जो है ना आपके भीतर अपना एक रास्ता बनाता है।
1: और वो आपकी ये दृश्यात्मक बातें आपकी कहानी में नजर आती हैं, और ये प्रेरणा की बात है हम नए लेखकों के लिए जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, लेखन की दुनिया में आ रही है, तो उन्हें ये बात हमें लगता है नोट करने लायक है कि अगर आपको कहानी लिखनी है किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर, तो उसमें डूबना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। मैं भी समृद्ध हुई इस बात से, तो अगली कहानी में मैं ये ध्यान रखूंगी। और ये बातें नजर आती हैं आपकी कहानियों में। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी कहानी है आपकी जो बहुत चर्चित है और बहुत डीप में लिखी हुई, तो इसमें जो एक कैरेक्टर है टेम्पटन दस्तूर, ये कहाँ मिले आपको, कैसे ढूंढा आपने?
0: ये बम्बई का ही है। और इसमें भी देखो, हमारे धोबी तालाब मरीन लाइंस के बीच में हमारे मामा की दुकान है मिठाई की, श्याम जी नारायण जी के नाम से, अब तो बंद हो गई वो दुकान। उनकी दुकान के ठीक सामने ये सारे पारसी परिवार थे।
1: जी, जी।
0: रमन मिश्र जी जो हमारे बहुत अच्छे किताब, उनकी भी दुकान वही है बम्बई में। अगर किसी को हिंदी साहित्य की कोई किताब खरीदनी तो उनकी दुकान पर जाना पड़ता था, तो मैं उनसे मिलने भी जाता था और अपने मामा से भी मिलने जाता था। तो ये जो परिवार जो था, जो मैंने जो करेक्टर जो लिए हैं उसमें, हक्कू भाई का जो करेक्टर लिया है, एक घर था उसमें दो बूढ़े लगभग 85 के आसपास की उम्र की और एक बूढ़ी महिला उसकी भी लगभग 90 के आसपास की उम्र, और तीनों सगे भाई बहन थे, तीनों ने शादी नहीं की थी और एक ही घर में रहते थे तीनों। ये मुझे थोड़ा सा अलग तरह का वो लगा कि कैसे मतलब ये रहते होंगे भाई बहन एक साथ बिना विवाह किए इतने सालों से। तो मैं हर बार जाता था उस परिवार की, कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करता था। तो टेम्पटन दस्तूर जो था वो उसके भाई का बेटा था।
1: अच्छा।
0: और वो उस तरह से कहानी में तो चीजें बदलती भी है, फिर अब सिर्फ करेक्टर का सवाल नहीं होता, कहानी में लोकल का भी बहुत महत्व होता है।
1: बिल्कुल।
0: वो पूरा जो लोकल है जिसको हम बॉम्बे का जो लैंडस्केप बोलते हैं वो इलाका वही है, और वो पत्थर की इमारतों का जो पूरा इलाका है उसमें मुझे हर जगह एक कहानी छुपी हुई दिखती है, क्योंकि सब इमारतें 100-150 साल पुरानी हैं।
1: जी।
0: तो कितनी पीढ़ियां उन इमारतों में से गुजरी होगी और कितनी कहानियां उसमें बनी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक लोकल था, और फिर मुंबई से मेरा नागपुर जाना हुआ तो नागपुर में इम्प्रेस मिल थी, उस इम्प्रेस मिल को मैंने अपने सामने डिमोलिश होते हुए देखा, तो 125 साल पुरानी जो चिमनी थी इम्प्रेस मिल की, कुछ लोग चाहते थे कि उसको हेरिटेज के रूप में रखा जाए, क्योंकि टाटा की ये मदर कंसर्न थी इम्प्रेस मिल, और उस इलाके की भी बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी उस मिल के कारण। बहुत बड़ा एक आर्थिक परिवर्तन हमारे देश में आया, तो लोग चाहते थे कि उस चिमनी को एक हेरिटेज के रूप में रखा है, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। तो जब वो चिमनी गिराई गई तब पहला बीज मेरी कहानी में आया, तो मैंने मतलब फिर दोनों को रिलेट किया लोकल को, एक यहाँ का इम्प्रेस मिल का लोकल था और एक बॉम्बे का ये वाला लोकल था, फिर उसके जो करेक्टर है, तो फिर चीजें मिलती गई और कहानी आगे बढ़ती गई उसी तरह से।
1: जी, तो वैसे भी आपकी कहानियों में शब्दों के साथ साथ हम आंखों से कहानी को देखते चलते हैं, ये आपकी खासियत है। और एक तो लंबी कहानी लिखने की, जो आपने खुद भी कहा कि लंबी कहानी लिखते हैं, तो क्या ये सायास लिखते हैं लंबी कहानी या अपने आप लिख जाती है
0: कहानी?

0: लिखते समय कभी भी ना ये नहीं सोचता मैं कि इसका अंत कहाँ होगा, और बहुत कोई निर्धारित और निश्चित अंत मेरे दिमाग में नहीं होता।
1: बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट के बारे में सोचते हैं, द्वंद्व के बारे में सोचते हैं, या वो भी लिखा
0: नहीं उस तरह से, मतलब किसी एक पहलू पर नहीं सोचता मैं। और मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मेरे कहानी के जो किरदार है वो खुद अपनी बात कहे, मैं उन पर अपने विचार न ला दूं।
1: बिल्कुल,
0: या एक लेखक कहीं उसमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये लेखक अपनी बात कह रहा है।
1: जी जी,
0: तो किरदारों को मैं अपनी तरह से खेलने का पूरा मौका देता हूँ, और मेरी इस छूट के कारण वो कहानी लंबी हो जाती कई बार।
1: जी जी, और वो पात्र बोलते हैं, संवाद करते हैं पाठकों से, और पाठक के दिल में कहीं पैठ बना लेते हैं। अब हमें लगता है संगीत आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, संगीत का दामन थाम लेते हैं जब बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर हम कौन सा गाना आपकी पसंद का सुनवाए अपने श्रोताओं?
0: पहली मतलब जो मेरी पसंद है, एक गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसमें सेक्सोफोन की आवाज है, उस गाने का नाम है जिंदगी कैसी है पहली
1: जी,
0: और उसमें आप ध्यान दीजिए कि सेक्सोफोन कितनी खूबसूरती से बजा है।
1: जी, तो सुनते हैं ये गाना।

0: मनोज जी ने अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी वाद्यों के बहुत शौकीन हैं, संगीत के बहुत शौकीन हैं जहां तक हमें जानकारी है, और इस गाने में सैक्सोफोन का खूबसूरत प्रयोग हुआ है। आपकी संगीतिक कथा त्रयी है, तीन कहानियों का एक संग्रह है अनुभूति, जिसमें तीन कहानियां साज नासाज और आमाजगा और अनुभूति, तीनों कहानियां मैंने पढ़ी हैं।
1: अच्छा,
0: और तीनों में संगीत के सुर हमें दिखाई देते हैं और खास तौर से वाद्य। तो इन जो तीनों कहानियां हैं, तीनों कहानियों के बारे में आप बताइए कि पहले तो साज नासाज में शायद सैक्सोफोन है, तो ये सैक्सोफोन ने आपको यहाँ पर कहानी लिखने के लिए बुलाया या आपको बुलाया सैक्सोफोन ने, क्या थी?
1: दोनों मिली जुली चीजें हैं। मैं एक बार गोवा घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पणजी में एक बड़ा ड्रामा फेस्टिवल हो रहा था, उसमें हबी साहब का भी एक प्ले था, रमेश तलवार साहब का भी प्ले था, गिरीश कर्नाड साहब का भी एक प्ले था और रतन थियम का भी था। तो मैंने अपना घूमना कैंसिल कर दिया, दोस्तों को अपने रास्ते पर भेज दिया और मैं इस ड्रामा फेस्टिवल में नियमित रूप से नाटक देखता रहा। एक शाम जब शो खत्म हुआ तो मैं समुद्र किनारे गया, एक रॉक बीच था वो पथरीला, उस पर एक बैठा हुआ था बीटनिक कलाकार, लगभग 55 के आसपास की उम्र होगी, लंबे बाल, अधपके सफेद बाल, और वो सैक्सोफोन बजा रहा था डूबते हुए सूरज को देखते हुए। समुद्र का किनारा है, डूबता हुआ सूरज और सैक्सोफोन की आवाज, इतना प्रभाव उसका मुझ पर पड़ा। एक तो वो पूरी दृश्यात्मक

0: सकता। यानी वो सिर्फ उसके बजाने का असर नहीं था, वो जिस तरह से समुद्र को या सूर्य को संबोधित होकर के बजा रहा था।
1: क्या बात है।
0: तो प्रकृति, संगीत और ये सब चीजों का जो मिला जुला प्रभाव था वो मेरे अंदर बहुत गहराई तक चला गया। उस सैक्सोफोन को लाइव पहली बार मैंने उस तरह से सुना। फिर कई सालों तक तो वो मेरे दिमाग में था कि ये सैक्सोफोन है, इसके ऊपर कुछ करूंगा। बंबई आना हुआ उसके बाद मेरा, लगभग 10 सालों के बाद।
1: जी।
0: बंबई में घाटकोपर में मेरी नमकीन की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के बाजू में एक चाल थी, वहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहते थे, साज बजाने वाले, जो फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर एक विली भाई हमारे परिचित, हमारे सेल्समैन थे परेल में, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो थे वो साज बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे सब, और ये सब फिल्मों में बजाते थे। तो ये मालूम हुआ कि घाटकोपर की चौल में जो रहते थे वो सब उत्तर प्रदेश के थे, और ढोलक, शहनाई, तबला, इस तरह के वाद्य बजाते थे, और बरेल में जितने रहते थे वो सारे गोवा से आए हुए थे।
1: जी जी।
0: और ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जो बजाए फिल्मों में उसके बजाने वाले हैं वो लगभग गोवा से आए हुए सब। तो उनसे मिलने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि सिंथेसाइजर आने के बाद और नई जो टेक्निक आई संगीत में, उसके कारण बहुत सारे इस तरह के साजिंदों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया कि अब उनको काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आजीविका में बड़ा फर्क आ गया। तो उसमें फिर ये ख्याल आया कि एक कोई सैक्सोफोन बजाने वाला है और उसने कई माइलस्टोन पीसेस दिए हैं कई फिल्मी गानों में, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं है। हालांकि मैं वैसा कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, किसी भी, हम संगीत निर्देशक को जानते हैं कि किस फिल्म में किसने संगीत दिया, लेकिन उसमें कोई खास धुन किस कलाकार ने बजाई
1: नहीं बताया जाता,
0: ये हमको नहीं मालूम होता है हमेशा। तो एक तो उसको कभी भी उस तरह से, मतलब सार्वजनिक कोई पहचान उसको नहीं मिली, और दूसरा उसका रोजगार भी चला गया। तो उस दर्द को मुझे लगता था कि केंद्र में लेना चाहिए कहानी में, तो वो एक सिलसिला बना फिर साज नसाज का।
1: और फिर उसके बाद सारंगी के मद्देनजर आपने आमाजगाह लिखी, जिसमें सारंगी का खूबसूरत प्रयोग है, तो कोई सारंगी वादक भी आपको मिला था ऐसे?
0: सारंगी वादक वैसे नहीं मिला, लेकिन सारंगी के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारंगी और सैक्सोफोन ये दोनों बड़े बदनसीब साज थे।
1: जी।
0: वो इस लिहाज से कि सैक्सोफोन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा था उसमें बहुत सालों तक कोई जगह नहीं मिली। सैक्सोफोन जो नाइट क्लब होते थे वहां बजता था, बाद में धीरे धीरे और लोग भी बजाने लग गए, फिर बाद में वो ऑर्केस्ट्रा में भी आया। ठीक वैसे ही सारंगी भी
1: और दुख में,
0: और उसको भी शास्त्रीय संगीत के विधिवत मंच में आने में सारंगी को भी बहुत समय लगा। तो ये दोनों साज की भी अपनी एक मार्मिक कहानी है, उसके बजाने वाले की तो हो गई अलग कहानी, लेकिन ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी अपनी एक बड़ी मार्मिक कहानी है।
1: बिल्कुल।
0: तो सारंगी का जब मैं ऐसा पढ़ रहा था कि इतना, मतलब ये कहां से आया, अच्छा उसकी आवाज इतनी सुरीली है, वो इतनी खींचने वाली आवाज है, सैक्सोफोन की भी और सारंगी की भी, फिर ये ख्याल आया। और दूसरा जो उस कहानी का जो बीज जो पड़ा, कुमार गंधर,
1: पंडित कुमार गंधर,
0: हाँ, उनके जो पुत्र हैं मुकुल शिव पुत्र, तो जैसा मैंने लोगों से सुना जो उसके बारे में खबर आई, तो उनके उस पीरियड में, उस फेज में वो किस तरह की परिस्थिति में थे, उसको देख करके मुझे लगा कि मैं अपने कहानी का जो नायक है उसको उस तरह से ले सकता हूँ। बल्कि सिर्फ आवाज का ही नहीं, इसका जो सितार वादक है अनुभूति का, वो भी लगभग एक तरह के मानसिक अवसाद की स्थिति में चले जाता है। तो एक कलाकार के जीवन में जब कहीं बड़ा अवसाद आता है, कहीं बड़ी जब उदासी आती है, और कई बार जब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर उसको घेर लेती है, तो उसका मानसिक संसार कैसा होता है, ये मेरे जहन में था, और इसी वजह से ये दोनों कहानी की रचना हुई
1: और बहुत चर्चित हुई। और ये अनुभूति कथा संग्रह में तीनों कहानियां शामिल हैं। हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि इन तीनों कहानियों में वाद्य यंत्र और कथा के बीच आपने रिश्ता कैसे स्थापित किया, क्योंकि पात्रों के साथ कहानीकार का भी एक नाता जुड़ जाता है।
0: तो असल में देखो, जो वाद्य बजाने वाला कोई भी जो शख्स है, उसका जो भी जीवन हो तो मानवीय जीवन है, और उसके भी अपने रिश्ते हैं, उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव है। तो वो जीवन का उसका उतार चढ़ाव और उसके रिश्ते, अच्छा दिक्कत एक ये आती है जो एक सामान्य आदमी में और एक कलाकार के जीवन में, खासतौर से इंस्ट्रूमेंटल जो प्लेयर होते हैं, वो

0: थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मुझे तो लगता है कि वो राइटर से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है वो कभी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ ले आती है जो मेरे नजर में तो एक कहानी है
1: जी,
0: है ना। उनके जीवन के उस तरह के जो उतार चढ़ाव है, उसके जो मोड़ है, वो कहानी वहीं से बनती है
1: जी।
0: तो मैं उनके संगीत और उनके जीवन दोनों को मिला करके कहानी बनाता हूँ
1: जी, और एक उम्दा कहानी बनती है। जहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक लिटरेचर प्राइज की टीम ने एक फिल्म बनाई थी आपके उपन्यास पर, जिसे जेसीबी शॉर्ट में कहते हैं, वो काले अध्याय पर, काले अध्याय का जब अनुवाद आया था
0: जी जी,
1: तो ये क्या कहानी है, कैसे किसी के मन में?
0: डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी। हाँ। असल में जो भी लेखक शॉर्ट लिस्ट होते हैं,
1: शॉर्ट फिल्म थी कोई,
0: शॉर्ट फिल्म थी उस लेखक के जीवन परिचय
1: जी जी।
0: तो वो हम पांचों लेखकों के ऊपर बनी थी।
1: हाँ।
0: जो पांच लेखक उस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे
1: जी,
0: तो वो पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसकी, और जब किसी को अवार्ड मिलता है तो फंक्शन के दिन उसको दिखाया जाता है
1: जी जी। तो वो फंक्शन के दिन दिखाने के
0: नहीं,
1: लिए
0: मैं, मुझे अवार्ड नहीं मिला था।
1: हाँ।
0: जिनका
1: पर आपकी किताब शामिल थी उस।
0: हाँ, किताब शामिल थी मेरी
1: जी। तो उस पर एक फिल्म बनाई गई थी और वो लोगों तक पहुंची, हमने भी देखी वो फिल्म। बेहतरीन।
0: हाँ, वो असल में जैसे भी एक विज्ञापन फिल्म थी।
1: हाँ।
0: वो अपने चुने हुए लेखक का बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं, उनकी एक टीम है, और अपने चुने हुए लेखक को, जो क्योंकि उनको लगता है कि विनर चाहे कोई भी हो, जो पांच लेखक शॉर्ट लिस्ट में आए उनके लिए वो सब समान है
1: जी। बिल्कुल सही बात है। बात फिल्मों की चली है तो यहाँ पर एक फिल्मी गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
0: बहुत प्यारी वायलिन की धुन है उस गाने में, एक प्यार का नगमा है,
1: मौजों की रवानी
0: है।
1: शोर फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना
0: जी।

0: अब बात फिल्मों की चली है और गाना ये सुनवाया शोर फिल्म का गाना। फिल्मों में आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, बातचीत में आप अक्सर फिल्मों का जिक्र करते हैं और कई बार तो ऐसी फिल्मों का नाम लेते हैं जो सुनी भी नहीं है और आपने देखी होती है, उसके बाकायदा किरदार का जिक्र करते हैं। हिंदी सिनेमा के साथ साथ विश्व सिनेमा का जिक्र करते हैं और ये कहा जाता है कि मनोज रोपड़ा बड़े विलक्षण कथाकार के साथ साथ फिल्मों के मर्मज्ञ हैं। तो बताइए इस शौक के बारे में।
1: मैं अपने आप को जो ना फिल्म का मर्मज्ञ या विशेषज्ञ नहीं मानता, मैं फिल्म का समीक्षक भी नहीं हूँ,
0: लोग मानते हैं।
1: मैं अपने आप को फिल्म का एक जागरूक दर्शक मानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखना भी एक कला है।
0: सही बात है।
1: और ये मुझे कब लगा, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। दुर्ग में प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ा था मैं और एक बार मैंने कहा कि मेरी इच्छा से एक कार्यक्रम करवाया जाए, तो हमेशा साहित्यिक गोष्ठियां तो होती थी, मैंने फिल्म पर वो कार्यक्रम रखा और उसमें पूना से सतीश बहादुर साहब को बुलाया। तो सतीश बहादुर साहब बहुत सीनियर मतलब टीचर रहे हैं
0: जी।
1: बहुत सारे जो हमारे आज के दौर के जाने पहचाने जो निर्देशक हैं, प्रकाश झा हैं या और भी, उनके सबके वो शिक्षक रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी उनको और उन्होंने जवाब दिया कि ये कोई ढंग है चिट्ठी लिखने का?
0: अरे
1: तो मुझे लगा कि कहीं से भी आपने कोई पेज फाड़ लिया और लिख दिया, पहले सिस्टमेटिक तरीके से चिट्ठी लिखना सीखो।
0: अच्छा।
1: तो मैंने जो चिट्ठी लिखी, क्या प्रभाव पड़ा होगा पता नहीं।
0: हाँ।
1: लेकिन मुझे ना वो जानते थे और ना एक छोटा सा शहर दुर्ग, कैसे वो आ जाते, लेकिन वो आए। उन्होंने दो दिन में अपने साथ वो बहुत सारे स्लाइड्स लेकर आए थे, बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स फिल्मों की लेकर आए थे और स्क्रीन पर छोटी छोटी फिल्में दिखाकर उन्होंने समझाया कि फिल्म का ग्रामर क्या होता है, उसको कैसे देखा जा सकता है। और उसके बाद बहुत इच्छा मेरी बढ़ गई, मुझे मालूम पड़ा कि पूना में एक कोर्स होता है फिल्म एप्रिसिएशन का, वो एक महीने का कोर्स होता है और उसके लिए कोई बड़ी औपचारिक की जरूरत नहीं होती, कोई भी कर सकता। तो मैं बड़े उत्साह में चला गया वहाँ और वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ से जो फॉर्म भरने जब गया था तो उन्होंने मुझे लौटा दिया। फिर मैं फिर सतीश जी के कमरे में गया।
0: हाँ।
1: मैंने कहा मेरा तो नहीं हो पाएगा इसमें, क्यों? तो मैंने कहा इसमें तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो क्या दिक्कत है? मैं बोला मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो मैंने कहा कि मैं छठवीं फेल हुआ, वो मेरा चेहरा देखते रह गए, तुम इतनी फिल्मों में इतनी रुचि रखते हो और तुम्हारी कुछ उस तरह की कोई फॉर्मूले एजुकेशन भी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन कुछ कोशिश कीजिए, मेरे लिए कुछ हो सकता है। तो देखो एक काम हो सकता है, पटना में प्रकाश झा 7 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं सिनेमा पर, तुम उसमें आ जाओ। तो मैं वहाँ गया, प्रकाश जी ने चिट्ठी लिखी थी मुझे बुलाऊंगा, उन्होंने कहा होगा, और 7 दिन उनके साथ रहा। उस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह से सिनेमा को समझाया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि शॉर्ट किस तरह से लिए जाते हैं, कोई अगर मीडियम शॉर्ट है तो उसका क्या अर्थ है, कोई एक्सट्रीम क्लोज है तो उसका क्या अर्थ है, कट आ रहा है तो क्या अर्थ है। तो ये शॉर्ट लेने के जो तरीके होते हैं उसमें कहानी होती है। और उसके बाद मेरी रुचि बढ़ती गई और फिर सिनेमा देखना मैंने अलग ढंग से सीखा। अगर मैंने वो क्लास नहीं की होती तो सचित रे की जो एक फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, चारुलता।
0: अच्छा।
1: चारुलता फिल्म के जो 7 मिनट है उसमें एक भी संवाद नहीं है, 7 मिनट तक फिल्म यूं ही चल रही है बिना संवाद के। और कैमरे का मूवमेंट जो है ना, उसको देख करके आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि ये पात्र जो कहना चाह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं।
0: जी जी।
1: यानी इतना खूबसूरत एक एक शॉट है कि बिना संवाद के भी हर स्थिति आपको बताते कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, बल्कि भीतरी जो मनस्थिति है चारुलता की वो भी बिना संवाद के मालूम पड़ जाता है। ये कितनी खूबसूरती है फिल्म की।
0: आपको फिर वहाँ एडमिशन मिला कि नहीं?
1: नहीं मिला।
0: नहीं मिला।
1: उसके बाद

0: पटना जाना पड़ा। पटना में 7 दिन उनके साथ रहा।
1: यहाँ पर मेरे जहन में तो सवालों की आंधी चल रही है, तो मैं क्रम से आपसे पूछती जा रही हूँ कि आपने बताया कि आपने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, पर आपकी कहानियां और उपन्यास पढ़ते हुए तो लगता है कि बहुत जरूरत से ज्यादा बौद्धिक इंसान, बहुत जरूरत से ज्यादा पढ़ाई किया हुआ अध्ययनशील, तो ये क्या कहानी है कि आपने कैसे पढ़ाई कैसे छोड़ी और क्यों नहीं पढ़ी?
0: नहीं, पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि गणित में फेल हो गया था और मुझे लगा कि गणित में कभी पास नहीं हो पाऊंगा।
1: ओके
0: अच्छा, दूसरे सारे जो सब्जेक्ट थे उसमें बहुत अच्छे नंबर थे
1: जी,
0: गणित में नंबर नहीं आते थे। और मैंने टीचर से कहा, एक साखर दांडे नाम की मैडम थी, तो मैंने कहा कि अब मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे छोड़ दोगे तुम? तो बोले फिर गणित हटा दो गणित अगर नहीं होगा तो मैं पढ़ सकता हूँ
1: जी।
0: तो घर में ऐसा मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं था कि
1: प्रेशर नहीं डाला माता पिता ने?
0: हाँ हाँ, हम लोग का परिवार जो है ना व्यावसायिक परिवार है, और अगर लड़के को मिठाई बनाना आता है
1: बस
0: बहुत हो गया।
1: हाँ।
0: उसको किसी तरह की अपने आजीविका के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा,
0: अच्छा, मेरी जितनी दिलचस्पी कहानी लिखने में, लगभग उतनी दिलचस्पी मिठाइयां बनाने में भी। और बचपन में लगभग 12 साल की उम्र में मिठाई का अच्छा कारीगर बन चुका था।
1: अच्छा तो फिर मिठाई बनाना तो खैर आपने सीख लिया, और जाहिर सी बात है कि मिठाई बनाते होंगे तो आपका परिवार खुश रहता होगा, खासतौर से आपकी पत्नी तो मिठाई खाकर तो बहुत खुश होती होंगी। तो जरा बात चलिए तो उनका भी जिक्र कीजिए।
0: नहीं, वो भी उसी परिवार से है, मतलब उनका भी जो व्यवसाय था उनके पिताजी का भी, वो भी मिठाई का ही था। और उनके पिताजी ने भी यही देखा कि इसको कितने तरह की मिठाइयां बनाने, उसने पूछा ही, जबकि मेरी पत्नी अंग्रेजी में है और मैं 6ठी फेल हूँ, तो पूछा भी नहीं कि इसकी पढ़ाई कहाँ तक है।
1: अच्छा।
0: सिर्फ उन्होंने ये देखा कि इसको मिठाइयाँ कितनी बनानी आती है।
1: तो आप पास हो गए मिठाई बनाने में,
0: उसके मतलब कारण पास हो गया।
1: नीता जी जो आपकी पत्नी, उन्होंने हाँ, पास किया कि नहीं?
0: बिल्कुल पास किया होगा।
1: तो मतलब आप उनके लिए मिठाई बनाते हैं घर पर?
0: मैं हर राखी के दिनों में एक मिठाई बनाता हूँ, मोहन थाल, गुजरात की बहुत स्पेशल मिठाई है
1: जी।
0: वो मिठाई मेरे हाथ की बनी हुई सबको बहुत पसंद है
1: जी। क्या बात है।
0: हाँ, सबको बहुत पसंद है। तो वो बहुत जिद करती है, नीता के 4-5 भाई हैं और मेरी भी 4-5 बहनें हैं, तो फिर वो इतनी बनती है कि सबको एक एक बॉक्स मिठाई हर के घर में पहुंच जाती है।
1: क्या बात है, ये बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बातें चल रही हैं। और बात मिठाई की चली, मिठास तो संगीत भी घोलता है, तो यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए मीठा सा, कोई गाना बताइए।
0: बहुत मीठा, बहुत प्यारा सा गाना है, वो पियानो बहुत खूबसूरती से उसमें बजा है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है
1: जी। साजन बिना सुहागन फिल्म का नाम है, सुनते हैं यही गाना जी।

0: थोड़ी देर पहले बात चल रही थी फिल्मों की कि आपकी फिल्मों में कितनी गहरी दिलचस्पी है और गहरा दखल भी है, मतलब फिल्मों की इतनी सारी जानकारी आपके पास है। आपकी कहानी है आखिरी सीन
1: जी।
0: और एक उपन्यास भी है प्रति संसार, तो ये क्या इस सिनेमाई भाषा का प्रयोग इसमें किया है, क्योंकि उसमें शाब्दिक दृश्य उपस्थित किए गए हैं, तो इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: एक मतलब ये ख्याल आया एक बार कि कैमरा चल रहा है
0: जी
1: और जो दृश्य दिख रहे हैं और कैमरे की आंख से मैं अपनी कहानी लिखूं, तो पहले मैंने प्रति संसार लिखा था और उसमें शुरुआत ही कैमरे से है कि दृश्य के ऊपर केंद्रित है और जो घटित हो रहा है उसका मैं शाब्दिक वर्णन कर रहा हूँ। तो उस पूरी फिल्म में ज्यादातर विजुअल्स हैं, लेकिन विजुअल्स और शब्द दोनों एक चीज तो है नहीं, तो मैंने प्रयोग किया था कि मैं दृश्यों को शब्दों में किस तरह से दिखा सकता हूँ। वो प्रयोग बहुत सफल हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। और ये जो कहानी है आखिरी सीन, इसका जो कथानक है वो मेरे जहन में काफी सालों से था। मैं अक्सर ये सोचता था कि जहां कहीं कोई बड़ी लड़ाई होती है, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, तो एक तरफ फौज होती है, दूसरी तरफ दुश्मन होते हैं।
0: जी जी
1: ठीक है, पर बीच में कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता
0: जी,
1: लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। तो ये मेरे जहन में था कि जो स्थानीय लोग हैं वो किसी भी बॉर्डर के आसपास का, जितना मैंने बॉर्डर पर एक दो और भी फिल्में देखी हैं, और बल्कि एक तो विशेषांक निकला था ज्ञानोदय का
0: जी,
1: उसमें सारी कहानियां ही वही थी जिसमें सीमावर्ती इलाके के आसपास का लोकेशन था। बॉर्डर जो है वो बॉर्डर में असल में बहुत अलग तरह का जीवन होता है। बॉर्डर में जीने वाले लोग कितने कस्में जीते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो उस पर कई कहानियां हैं और उस पर एक लीलाधर मंडलोई साहब जब ज्ञानोदय में थे तो उन्होंने एक विशेषांक निकाला था और मैंने एक लेख भी लिखा था उसमें। मैंने अलग अलग बॉर्डर के इलाकों के कौन कौन सी फिल्में बनी हैं, तो ये मेरे जहन में था, लेकिन वो कथानक उसको फॉर्म नहीं मिल रहा था। कभी कभी क्या होता है कि आप कहानी का आपका कंटेंट तो दिमाग में आ गया, लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए वो रूप कभी कभी नहीं मिलता, कंटेंट मिल जाता है। अब वो 2-3 साल तक लगातार चलती रही कसमकस का। मैं पहले एक बार ये प्रति संसार वाला काम कर चुका था तो अपने फॉर्म को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरी सीन में फिर मुझे लगा कि उस फॉर्म के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता, तो उस कहानी को भी मैंने सिनेमेटिक भाषा में लिखा है कि जो घटनाएं हो रही है उसमें मैंने फिर ये चरित्र जो रखा वो फिल्म निर्देशक का रखा कि एक निर्देशक है वो एक फिल्म बनाना चाह रहा है
0: जी जी,
1: और उसका व्यक्तिगत जीवन में इतनी परेशानी आ गई कि अब उसका स्टूडियो भी खत्म हो गया, उसका परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया और वो फिल्म बना नहीं पा रहा है, तो वो एक मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है और जो फिल्म इस कहानी में मैंने वर्णन किया उसको कल्पना में बनाता है। यानी वो उसके पास अब कैमरा भी नहीं है, उसके पास अब टीम भी नहीं है, वो पैरालिसिस हो चुका है, अब वो खोए रहता है ख्यालों में और उस ख्याल में वो फिल्म बना रहा है। ये उस कहानी का मैंने फॉर्म तय किया था।
0: कितनी सूक्ष्म संवेदना है इसमें, इस कहानी में। तो क्या ये जो सिनेमाई लेखन जो शिल्प होता है, तो इस शिल्प के लिए क्या अलग से आपको कोशिश करनी पड़ी या स्वतः लिखता चला गया एक नदी की धारा की तरह?
1: वो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की भी अपनी एक भीतरी मांग होती है
0: जी।
1: हर बार हम कहानी के दृश्य नहीं खड़े करते, कभी वही कहानी भी अपने रंग से अपने दृश्य खड़ी करते हैं। जैसे आपकी खुद की एक कहानी है, मराठी में शीर्षक है उसका,
0: तुझी में वाट पाते।
1: हाँ हाँ, अब उस कहानी में समुद्र किनारे के रेतीले दशाओं में कार फंस गई है
0: जी,
1: और वो कार जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रही उतनी धसते जा रही है
0: जी,
1: और उस कार में जो युगल बैठा हुआ है उसको एक बूढ़ी महिला देख रही है जो उसका अतीत है
0: जी जी।
1: तो वो जो सीन है ना वो आपने नहीं लिखा है,
0: उस किरदार ने लिखा है,
1: वो कहानी ने खुद क्रिएट किया है। जब कहानी खुद कोई सीन क्रिएट करती है तो लेखक का काम सिर्फ इतना होता है कि उसको बिगाड़े ना।
0: बिल्कुल,
1: कई बार लेखक बिगाड़ देता है दृश्यों को, जब सहज रूप से कोई चीज आती होती है उसको सहजता के साथ लिखने के बजाय अपनी बहुत ज्यादा जो दिमाग लगाने वाला लेखक होता है वो अच्छी कहानी नहीं लिख पाता।
0: बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा भाषाई खेल करने लगते हैं शिल्प को खूबसूरती से सजाने की कोशिश में,
1: सहजता से कुछ चीजों को अपने भीतर आने देना चाहिए जिसको हम

0: छोटे शब्दों में कहे कि आत्मसात करना।
1: यहाँ पर आपका शुक्रिया भी हम अदा कर दें कि आपने इतने ध्यान से कहानी को पढ़ी और इसका जिक्र किया। यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
0: एक बहारो मेरा जीवन भी सवारों, उसमें बांसुरी और सितार का काम बहुत खूबसूरत है।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: बात बांसुरी और सितार की आपने की, तो क्या इस पर, सितार पर तो एक कहानी है अनुभूति
1: जी,
0: बांसुरी पर भी कोई कहानी लिखी?
1: अब आ रही
0: आ रही है।
1: अब वो कहानी नहीं है, वो अब उपन्यास है।
0: हाँ।
1: और लगभग आधा लिखा जा चुका है
0: जी।
1: और मेरी आदत है हमेशा कि मैं लिखने से पहले कई बार बताता हूँ लोगों से, यानी लिखा नहीं है। जैसे आमाज का कहानी जो थी वो लिखने से पहले मैंने अपने एक दोस्त है बसंत त्रिपाठी, दोस्तों के साथ बैठा था, बसंत के साथ उन्होंने, और मैंने वो पूरी कहानी उसको सुनाई, जबकि उसका एक शब्द भी मैंने नहीं लिखा था। ये जो कहानी है बांसुरी की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मेरा अभी मतलब अभी लिखा नहीं है मैंने। एक बच्चा है जो माँ से बिछड़ गया है
0: जी,
1: और वो लोकल मतलब किसी ट्रेन में बैठ के मुंबई पहुंच गया है, और वो मुंबई में लावारिस है और इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है। उसमें एक अपाहिज बांसुरी वाला जो बांसुरी बजा करके भीख मांगता है, उसके साथ उस बच्चे की थोड़ी अच्छी तालमेल हो जाती है, वो उसके साथ घूमता फिरता है, उसके साथ रहता है। मंदिर के सामने कभी बांसुरी बजाता था, कभी चौपाटी में जाकर के बांसुरी बजाता था, तो उसके साथ रहते हुए ये भी बांसुरी बजाना सीख गया। और कुदरती उसके अंदर कोई गुण था बांसुरी बजाने का, वो जब भी बांसुरी बजाता था आसपास चलते हुए लोग ठिठक के रुक जाते थे
0: जी।
1: तो ये किरदार अभी मेरे जहन में है,
0: लिखना बाकी है।
1: लिखना बाकी है जी।
0: तो इस उपन्यास का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जो आपने थोड़ा सा टीजर

दिया है। तो हमें ही नहीं, हमारे सभी श्रोताओं को जो पाठक हैं, जो कहानी और साहित्य से प्यार करते हैं, तो शुभकामनाएं इसके लिए। मनोज जी, आपने फिल्मों का जो जिक्र किया, फिल्में इतनी सारी देखी हैं और आपके जहन में इतनी कचोट के साथ अंदर पैठ किए हुए हैं, और कुछ ये जो भाषा का प्रयोग भी किया आखिरी सीन में और प्रति संसार में, तो आपकी क्या तमन्ना है कि आगे चल के आप फिल्मी

0: बल्कि आप फिल्मी राइटर बन जाएंगे, फिल्मों में
1: नहीं,
0: लेखन
1: फिल्मों
0: करेंगे।
1: का फिल्मों पर मैंने लिखना इसलिए भी शुरू किया कि एक समय के बाद जब मैं विश्व की तमाम फिल्में जब देखता था, और उसके बरक्स जब मैं एशियन फिल्में देखता था, एशिया के देशों की फिल्में देखता था, एक समय मुझे ऐसा लगा कि पश्चिम जो है ना, वही सारे पैरामीटर्स बनाता है कि फिल्म कैसी होनी चाहिए। कांस फेस्टिवल में लगभग उसी तरह की फिल्में आती हैं जिसका मानक पश्चिमी सिनेमा ने बनाया है, तो हर बार उनके चले हुए मानक, उन्हीं के पैरामीटर्स के कारण जो फिल्में बनती थी, और उनके ही सारे फेस्टिवल, उस विश्व के जो बड़े जो फिल्म के फेस्टिवल होते हैं या जहाँ पे उनको बड़ी अवार्ड दिए जाते हैं, उनके मानक के आधार पर ही सारी चीज़ें होती हैं। एशियन फिल्में जो थी वो बहुत उसमें आती नहीं थी, और एक समय ऐसा आया जब उन पश्चिमी फिल्मकारों ने ये तय कर लिया, मतलब ये घोषणा कर दी कि कहानी की जरूरत नहीं है सिनेमा को। बहुत सारे ऐसे प्रयोगवादी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये विजुअल माध्यम है और दृश्य में जो कुछ कहा गया है कैमरे के द्वारा वही फिल्म है, फिल्म को अलग से किसी कहानी की जरूरत नहीं है। तब मैंने सोचा कि बिना कहानी के कैसे फिल्म हो सकती है। उसके बाद मैंने पश्चिम की ऐसी फिल्में जिसमें सिर्फ एलिनेशन था, जिसमें सिर्फ सिनेमाटोग्राफी थी, उसके बरस मैंने एशियन फिल्मों पर लिखना शुरू किया। मैं कुछ फिल्मों का नाम लेता हूं अभी,
0: जी बिल्कुल
1: है ना, उसमें एक अफगानिस्तान की फिल्म है ओसामा,
0: जी।
1: उसके बाद एक कुर्दिश फिल्म है ब्लैक बोर्ड्स। ये दोनों फिल्म तो सबको देखनी चाहिए,
0: जी।
1: शिक्षा, और वो भी नारी शिक्षा, उसका कितना महत्व होता है ऐसे देशों में जहां बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं स्त्री शिक्षा को लेकर के। ये फिल्म और इन फिल्मों की कहानी, फिर मजीदी की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जफर पनाही की फिल्म है ऑफ साइड। ऑफ साइड का कथानक ऐसा है कि लड़कियां जो है वो फुटबॉल देखना चाहती, फुटबॉल का मैच, लेकिन ईरान में फुटबॉल मैच देखने की लड़कियों को पाबंदी है, तो ये लड़कियां सब पुरुष का वेश धारण करके, पुरुष जैसे कपड़े पहनकर, अपने बाल कटवा करके वो फुटबॉल का मैच देखने जाती हैं। इस तरह की बहुत दिलचस्प कहानियां,
0: तो ये सब अपने हिंदुस्तानी सिनेमा में भी।
1: हाँ, और
0: चाहिए।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया।
0: जी,
1: उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा,
0: जी,
1: और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: बिल्कुल मनोज जी, आपके लेखन में जीवन की जटिलताओं और मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व, इसकी गहरी उपस्थिति संवेदनात्मक दृष्टि से आती है, तो एक लेखक के रूप में आपको सबसे ज्यादा विचलित और उद्वेलित क्या करता है?
1: दोनों चीजें एक सामने सामने होती है, एक सामाजिक यथार्थ है और दूसरा मनोवैज्ञानिक यथार्थ, मोटे मोटे शब्दों में
0: जी।
1: कि किसकी किसी तरह की, मतलब किसी भी घटना में कोई उसका पहलू जो होगा, जिसके कई लोगों से जुड़ना, उसके बाद उसके साथ जीवन में कोई परिवर्तन आना, और दूसरा खुद उसके भीतर किसी अनपेक्षित विचार का उठना, और खुद उसका भीतर का संसार कहीं दूसरी चीजों से प्रभावित होना, तो बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, उसके बाद भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है।
0: जी जी,
1: तो इसको गौर से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो बाहर का भी उतना ही है और भीतर का भी उतना ही है।
0: जी जी,
1: तो ये भीतर बाहर के जो कश्मकश है उसी में कहानियां हैं।
0: बिल्कुल, तो आपके लिखने का कोई खास तरीका होता है, कोई खास माहौल की जरूरत होती है कि समंदर के किनारे जाके बैठे, नदी के किनारे या घर के अंदर?
1: नहीं, मैं तो शुरू से मेरी लिखने का जो तरीका था वो यही था। मैं मिठाई की जब दुकान थी नागपुर दुर्ग में, तो जो तराजू होती मिठाई तोलने की, उसके नीचे एक डेस्क थी, वही मेरे लिखने का टेबल था, और लिखता था कुछ, और कोई ग्राहक आ गया तो उनको मिठाई दे दी, वो चले गया तो फिर लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी शुरू से ये हैबिट रही है कि अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आसपास ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, बार बार बीच में कोई हस्तक्षेप करने वाला ना हो, तो मैं कहानी नहीं लिख सकता।
0: जी जी, ये तो बात उल्टी हो गई। अमूमन लेखकों को
1: हाँ एकांत चाहिए,
0: एकांत चाहिए।
1: हाँ, मैं अभी भी अभी अपने वर्कशॉप में बैठकर लिखता हूँ।
0: हाँ,
1: काम चलता है और सारे दिनचर्या अपने तरह से चलती रहती है और मेरा लिखना भी चलता है।
0: आपका जो लेखन है उसमें बड़ी वो शांति, हालांकि आप बड़े अशांत माहौल में लिख लेते हैं, लेकिन लेखन में शांति महसूस होती है। पढ़ते हुए और बहुत मंथर गति से पाठक पढ़ना चाहते हैं आराम से तसल्ली से, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हैं।

0: लेखन भी है, मौन भी उतना ही है और संवाद भी उतने ही होते हैं, तो ये जो तादाद में है किस तरह से स्थापित करते हैं आप?
1: देखो, पाठक का तो ध्यान बहुत पहले रखना ही पड़ता है। लिखते समय मेरी सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि मैंने जो एक वाक्य लिखा है वो खुद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और मैं एक एक वाक्य को चार चार पांच पांच बार लिखता हूँ। कहानी के भले मैं ज्यादा ड्राफ्ट नहीं बनाता, लेकिन वाक्यों के ऊपर मेरी बहुत मेहनत होती है और मेरी ये कोशिश होती है कि हर वाक्य में कोई एक शब्द चमकता हुआ हो, उससे पाठक, मतलब जो पूरे वाक्य में जो बात कही गई है, एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक तुरंत मतलब आकर्षित हो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो उसको पढ़ने में मजा आता है। तो पढ़ने का जो सुख होता है, अगर जैसे हम पढ़ते समय, मैं पाठक भी हूँ ना भाई, मैं लेखक तो हूँ, उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे उपन्यास मैंने पढ़े हैं, दूसरी सब चीजें हैं। तो जिस उपन्यास में किसी लेखक की भाषा बहुत शानदार होती है, उसकी वाक्य रचना बहुत अच्छी होती है, उसको पढ़ने में इतना आनंद आता है। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जब लिखूं तो पढ़ने वालों को मजा आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी एक उत्कृष्ट साहित्यकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट चित्रकार भी हैं।
1: उत्कृष्ट चित्रकार
0: ये आप कहते हैं, तो चित्रकारी के शौक और चित्रकारी के बारे में बताएं।
1: नहीं, शौक तो है, शौक तो संगीत का भी है, लेकिन मैंने आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। चित्रकारी का मैं हिम्मत कर ली थोड़ी, और इसके पीछे एक ऐसा किस्सा, एक उपन्यास मैंने पढ़ा था, मून एंड सिक्स पेनी,
0: जी
1: हिंदी में उसका अनुवाद है चांद और छह आने। उसका जो किरदार है वो सामान्य जिंदगी जीने वाला, वो LIC का एजेंट है। उसकी जो पत्नी है वो बड़ी कला प्रेमी है, और वो अपने सब मेहमानों को जब बुलाती है, उसमें साहित्यकार हैं, कलाकार, ये सब आते थे, इससे वो मिलाती नहीं थी कभी। तो एक बार एक उपन्यास का जो लेखक है वो उसके घर गया मिलने, और उसने कहा कि भाई आपके पति कहाँ है उनसे मिलाओ, हमको बच्चे कहाँ हैं उनसे मिलाओ। बोले हमारे पति जो है कला में साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं है, नहीं अभी उनकी मतलब मिलने की इच्छा नहीं है। तो नहीं नहीं बोले आपके घर आया हूँ तो उनसे मिलकर जाऊंगा। तो मुलाकात हुई, उस पल दो पल की मुलाकात में एक दूसरे को दोनों ने क्या देखा क्या समझा पता नहीं, और ये दो चार दिन के बाद वो LIC का जो एजेंट था उसने घर छोड़ दिया, कहीं चला गया बिना बताए। बहुत खोजबीन हुई, बाद में मालूम पड़ा कि वो पेरिस चले गया, और उससे पूछा गया भाई तुम क्यों साहब आ गए घर बार छोड़ के, तो बोले मुझे चित्रकार बनना है। तो भाई चित्रकार बनना है, लेकिन तुमने जीवन में कभी कोई चित्र बनाया? बोले नहीं बनाया, लेकिन मेरी इच्छा हो गई चित्रकार बनने की। ये उपन्यास मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा यार मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो मैंने छोटा मोटा कोई स्केच में नहीं किया कागज, अच्छा। में बड़ा कैनवास, वो भी फ्रेम किया हुआ कैनवास नहीं, कैनवास का रोल पूरा।
0: जी जी।
1: मैंने कहा कि करना तो बड़ा करना है, भले वो किसी काम का ना हो, लेकिन करना बड़े कैनवास
0: बड़े
1: में
0: फलक बढ़िया।
1: तो चार पांच चित्र मैंने बनाए, और उसके बाद वो मामला रुक गया। तो उस तरह से चित्रकार नहीं हूँ, एक क्षणिक दौरा पड़ा था।
0: जी जी।
1: उस दौरे में दो चार हाथ मैंने चला लिए।
0: अपने श्रोताओं को बता दें कि आप निबंध लेखन भी करते हैं, अनुवाद भी किया है, कहानी उपन्यास तो है ही, और इस समय रिकॉर्डिंग के समय रिकॉर्डिंग में आपकी पत्नी नीता जी भी आई है स्टूडियो में, कांच के उस पार बैठी है। नीता जी का कितना योगदान है आपके लेखन में?
1: नीता जी का योगदान ऐसा है,
0: सहयोग
1: नहीं बड़ा योगदान है। इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लिखने से पहले सुनाता हूँ, तो कोई और नहीं होता, जब मेरा कोई दोस्त नहीं होता तो ये अकेली मेरी श्रोता होती है। कई मैंने कहानियां, जैसे अभी अनुभूति कहानी जो है वो मैंने अपने ऑफिस से फोन करके नीता को सुनाई कि अभी ये ख्याल मेरे दिमाग में आया है। तो नीता मेरी पहली श्रोता होती है, और उसके एक्सप्रेशन मुझे समझ में आ जाता है कि कहानी ठीक बन रही है कि नहीं। इससे बड़ा योगदान क्या होगा?
0: जी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: उपन्यास जो है काले अध्याय,
0: हाँ हाँ।
1: वो पूरा उपन्यास मैंने अपनी बेटी को सुनाया लिखने से पहले। उसको सुनाता था रात, उसको बहुत जिद होती थी कहानी सुनने की, जब वो छोटी थी तब भी
0: जी।
1: रोज पापा कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, जब तक मैं उसको कोई कहानी और बना बना कर कोई भी कहानी सुनाता था जिसका कोई सिर पैर ना हो।
0: जी जी।
1: लेकिन जब तक नहीं सुनाओ तब तक उसको नींद नहीं आती थी, तो लोरी सुनने के बजाय वो कहानी सुनती थी।
0: क्या बात है।
1: तो ये मेरा मतलब तरीका रहा है कि मैं अपने आपको जो है ना कभी छुपा कर नहीं रखता कि मैं जो लिखने वाला हूँ उसको अगर बता दूंगा तो किसी की टोक लग जाएगी और मैं लिख नहीं पाऊंगा।
0: खुली किताब होना चाहिए एक लेखक को। मनोज जी, बड़ी दिलचस्प बातें और बड़ी जानकारी वाली बातें आपने कही हैं, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की हैं, और हमें तो

0: सचमुच बहुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए, लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो घड़ी की सुइयां अब विराम लगाने को कह रही हैं। फिर कभी एक लंबी बातचीत आपसे करना चाहेंगे। आज बस इतना ही। आप आए विविध भारती के स्टूडियो में और इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शुक्रिया, शुक्रिया।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उपन्यासकार, कहानीकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: आज के

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: रंग तरंग
4: विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: ओ सांवरे इस एल्बम से सुन रहे थे भजन आप, जिसे गाया अजित कल्ले ने और मनोहर राय ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: कितने ही रंग इस एल्बम से आप सुन रहे थे बशीर बद्र का ये कलाम चंदन दास की आवाज में।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
1: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गजल जिसे लिखा है रिफत सारोश ने और सितम एल्बम से चंदनदास की आवाज में। इसे सुनते हैं।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: Biz Ayçin'de okuyor.
1: नमस्कार, आईची नागोया एशियन गेम्स की अपडेट के साथ मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ साक्षी मंडवाल। अभी अभी ये खबर आ रही है कि एक और ब्रॉन्ज मेडल भारत का पक्का हो गया। तीरंदाजों ने कल गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई थी और अभी अभी एक ब्रॉन्ज मेडल गणेश मणिरत्नम ने दिलाया है। तीरंदाजी में व्यक्तिगत जो इवेंट है कंपाउंड मुकाबला, उसमें उन्होंने अभी अभी गोल्ड मेडल जीता है। गणेश ने जबरदस्त फॉर्म दिखाई है इस मुकाबले में। 15 में से 14 निशाने परफेक्ट रहे और परफेक्ट 10 का उन्होंने स्कोर बनाया। गणेश मणिरत्नम ने यह मुकाबला 149-144 के बेहद आसान अंतर से जीता। हम आपको बताएं कि गणेश सिर्फ 20 साल के हैं।

0: ट्रायल में ओजस देवतले को पीछे छोड़ा था, ये गणेश का पहला एशियन गेम्स है।
1: Right on the other side, we now bring to you the news from the world of cricket, where India is up against Sri Lanka in the semi-final match today, and India, having been put into bat first today, was able to put on a total of 169 for the loss of 7 wickets in 20 overs, thanks to a very important and very resourceful contribution by Ishan Kishan, who put in 80 runs in 46 balls at a strike rate of 173.91, which included 4 fours and 5 sixes. When at one stage India was reeling at 87 for 4, it was a very confident and a very important contribution, the runs that came in from the bat of Ishan Kishan. And agar Sri Lanka ki baat kare to Sri Lanka ke bowlers ki taraf se ek all-rounded performance aaj hume dekhne ko mila, jahan par Tarendu Ratnayake ne 2 wickets liye, Sahan Archandigge ne 2 wickets liye, wahi वनुजा साहन ने एक विकेट लिया, लसित क्रूसपुल्ले ने एक विकेट लिया और फर्नांडो ने भी एक विकेट लिया। सो वेल राउंडेड ऑल राउंडेड एफर्ट फ्रॉम द श्रीलंकन बोलर्स, बट नाउ श्रीलंका नीड्स 170 इफ दे वांट टू गो अहेड एंड विन दिस मैच अगेंस्ट इंडिया। द चेज कमिंग अप नेक्स्ट आल्सो।
0: साक्षी, स्क्वाश से अच्छी खबर है, जहां भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। हालांकि सेमीफाइनल में भारतीय टीम को उम्मीदों के विपरीत 1-2 से हार मिली। पहला मैच अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ 2-3 से गवाया। स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा। तन्वी खन्ना ने वर्ल्ड नंबर 33 ली का यी को 3-1 से हरा कर टीम को वापसी कराई। तन्वी ने मैच को 13-11, 11-9, 13-11 से जीता, लेकिन निर्णायक मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा होजे लोक से लगातार गेम में 4-11, 7-11, 9-11 से हार गई और भारतीय टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
1: जी, एंड इन द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग, इंडियाज अनीश भालावाला हैज मेड इट थ्रू द मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल आफ्टर फिनिशिंग 9th इन द क्वालिफिकेशन विद अ टोटल ऑफ 576 पॉइंट्स। भालावालास फाइनल सीरीज यील्डेड जस्ट 94, बट ही अर्नड अ प्लेस इन द फाइनल आफ्टर साउथ कोरिया हैड 3 शूटर्स फिनिश इनसाइड द टॉप 8। With only 2 shooters from each country allowed to qualify, Bhanawala moved into the final. It will be India's final shooting event at these Asian Games, with Bhanawala now carrying the country's last medal chance in this discipline. And that match is scheduled for noon today, Indian Standard Time.
0: Yeah, and yesterday, 3 gold ki hat-trick ke baad, jo tirandazon ki hum baat kar rahe the, aaj ek bronze bhi aaya hai. Aur ab hum aapko ye bataye ki टेनिस में एक निराशा फिर से हाथ लगी है। पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के सुमित नागल चीन के यिबिंग वू से 4-6, 4-6 से हार कर बाहर हो गए। नागल के इस हार के बाद 40 साल बाद ये पहला मौका है जब भारत को टेनिस में कोई पदक नहीं मिला और खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
1: Right, in the world of taekwondo also, we can give you a quick update that India's campaign in the women's individual Pumse event in taekwondo ended as Rupa Beor bowed out of the semi-final. She finished with 7.6100 points. This was not enough to finish amongst the 8 stars who qualified for the final.
0: और कुश्ती की बात करें तो भारत के लिए मिलीजुली खबर है। नितेश सिवाच ने पुरुषों के ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर एक पदक पक्का कर लिया है। नितेश ने हांगझोउ एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंगोलिया के गंगकुयांग गनबातार को सेमीफाइनल में 9-0 से हराया। इस जीत के साथ नितेश ने भारत का 2026 एशियन गेम्स में कुश्ती का पहला मेडल पक्का कर दिया। नितेश ने इस साल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था।
1: Right, and as we wrap up this update, a quick look on the medal table also, with India standing still on the 8th spot in the medal table with a total of 63 medals, which includes 10 gold, 22 silver and 31 bronze. Here's hoping that the Indian medal tally carries on increasing and that India finishes on a good spot. For now, it's me, Sakshi Mandwal, and Dharmendra saying goodbye to all our listeners. We'll be joining you once again at 12:30 p.m. in the afternoon with the updates of the ongoing Asian Games 2026. Thank you for tuning in. Goodbye.

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: सोनू निगम की आवाज में जान इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा फैज अनवर ने, निखिल विनय का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। हलचल हुई, हलचल, जरा शोर हुआ।

0: आजा नचले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, जयदीप साहनी के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजों में गुलजार के बोल, अनु मलिक का संगीत, फिल्म जाने माने।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।

0: शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: किशोर कुमार की आवाज में अभिमान फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा।

0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आज याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनके जन्म जयंती पर, और उन्हीं के गीतों के जरिए यादों की महफिल कार्यक्रम आज गुलजार है। आइए सुनते हैं अनामिका फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: अनामिका फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार के आवाज में। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देव बर्मन की तर्ज। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जा

0: जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है। दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
0: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं। आज

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आराधना फिल्म से गीत आपने सुना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के गीत आपको सुनवा रहे हैं। चलिए सुनते हैं अंदाज अपना अपना फिल्म से ये गीत। अलका याग्निक और SP बालासुब्रमण्यम की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में रोजाना करते हैं कि एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर और उसमें छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं। तो आज की इबारत आपको पहले सुना देते हैं। आज की इबारत है, उम्र का क्या है बढ़ती जाती है और ये दिल दिल तो बच्चा ही रहता है। तुम भले 60 के हो या 55 के, कहां भूलते हैं दिन बचपन के। वैसे बचपन ही क्यों, जवानी प्रेम प्यार एक दूसरे से मिलने की हर घड़ी भी तो उन महकती यादों के साथ ही है जो हमने साथ साथ चलते हुए गुजारी है। कुछ भी कहो, इन चांदी से चमकते बालों में जो नरमी है वो बादलों में भी नहीं। तुम्हारे मीठे बोल आज भी धड़कनों को जवां बनाने का हुनर रखते हैं। वैसे हम भी कम नहीं, आज भी जिस गली से निकल जाएं, हसीनाएं जान छिड़कती हैं, आहें भरती हैं। पर क्या करें, तेरे चेहरे से नजर हटे तो कुछ देखें। उम्र की ये ढलती शाम भी तेरी जुल्फ के साए में बितानी है, ना इसके सिवा कुछ चाहा, ना इससे बढ़कर ये जिंदगानी है। तो ये हमारी आज की इबारत है जिसमें बहुत से ऐसे शब्द छुपे हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। साथ ही एक थीम भी इसमें छुपी हुई है जो हमारे साथियों ने

बिल्कुल सही पहचानी, वरिष्ठ नागरिक दिवस की शुभकामनाएं देते हैं हमारे साथियों को। और हमारे साथियों ने उम्र को लेकर बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गूगल का जमाना तो अब आया, पुराने जमाने का असली गूगल अगर कोई है तो वरिष्ठ यानी सीनियर सिटीजन ही है, जिनके पास अनुभवों का खजाना होता है। पुराने जमाने में कोई अच्छे कार्य शुभारंभ करने से पहले या विकट परिस्थितियों में निकलने के लिए उनकी सलाह ली जाती थी। इस बात पर गुजराती मुहावरा भी है, गेड़ा गाड़ा वारे, यानी मतलब दलदल में फंसी बैलगाड़ी हो या जीवन रूपी गाड़ी हो, बुजुर्ग व्यक्ति अपने अनुभव से बाहर निकाल सकता है। तो इन्होंने वरिष्ठ श्रोताओं को और वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सभी छोटे बड़े मित्रों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आप भी हमें भेजिएगा बहुत सी बातें। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि उम्र कैलेंडर की तारीखों से नहीं स्वयं के नजरिए से बढ़ती है। शरीर भले 55-60 का हिसाब रखने लगा है पर दिल ने घड़ी पहनना सीखा ही नहीं। वो आज भी उसी आंगन में कूदता है जहाँ बचपन में कूदता था, उसी गली में खड़ा है जहाँ पहली बार धड़कनें तेज हुई थी। लेकिन ढलती उम्र के साथ जब बालों में सफेदी आती है तो बढ़ती उम्र की निशानी नहीं होती बल्कि जीवन में मिले अनुभवों का प्रमाण पत्र होती है। और दिल का बचपना मिजाज इस बात का सबूत है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने उस बचपने और जवानी को जिंदा रखा हुआ है। जो तो आज कोई भी गीत सुनकर जो मुस्कुरा देता है, जहाँ जीवन की ढलती शाम भी किसी नए सवेरे से ज्यादा हसीन लगती है। भाई बेहतरीन बातें आप लिख भेजते हैं कोई भी विषय हो, लेकिन ये भी तो बताइए कि उम्र को आप किस तरह से देखते हैं। क्या कोई ऐसे काम है जिन्हें आप अब नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि ये सब करने की अब उम्र नहीं रही? बताइए हमसे। और साथ ही बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसे लिखा किसने है और संगीतबद्ध किसने किया है।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत आपने सुना सुजाता फिल्म के इस गीत में। यही हमारे सवाल का सही जवाब था जो आपने बिल्कुल सही बताया।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की साल

0: जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: तो विविध भारती के जश्न में तो आप सभी शामिल होने ही वाले हैं, लेकिन अभी इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम, जिसमें आज हम वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर कुछ उम्र की बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कहने की उम्र तो जीवन के मौन यौन परक शैशव बालक किशोर युवा प्रौढ़ वृद्ध और अति वृद्ध जैसे विभिन्न पड़ावों का एक स्वरूप मात्र है। इसमें किशोरावस्था को उस मौन यौन परक रवानी की तीव्रता अपने नियत सुर लय ताल जैसे दर से मृत्यु पर्यंत नृत्य कर रही है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी बातें लिख दी हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक बचपन था, आंगन में नंगे पांव दौड़ते हुए छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाते हुए बिना किसी चिंता के शाम तक खेलते हुए एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर पूरा बचपन एक सुंदर सपना लगने लगा। और शायद यही तो सफर है, बचपन की मासूमियत से उम्र की समझदारी तक, काले बालों की रवानी से चांदी की कहानी तक, और दूसरों के लिए जीते जीते एक दिन अपने ही भीतर लौट आने तक। मगर सच कहें तो यादों में आज भी वही बच्चा कहीं मुस्कुरा रहा है। वाकई अपने अंदर अगर बचपन जीवंत है तो बहुत सी बातें ऐसी लगती हैं कि जैसे कल की ही बात हो। हमारे एक और साथी कहने की वक्त का पंछी बचपन और यौवन के पड़ावों से उड़ते हुए आखिरकार बुढ़ापे की दहलीज पर आ पहुंचता है। ढलती उम्र में प्रगल्भता और अनुभव का साथ बुजुर्ग इंसान को अधिक समर्थ बना देता है, साथ ही साथ खुद के भीतर उत्साह से भरे बचपन को जिंदा रखना इसी में उसका बड़प्पन है, सुख समृद्धि है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन दिवस की अनेक शुभकामनाएं इन्होंने दी हैं। ये बताइए कि वरिष्ठ नागरिकों को, क्योंकि अगर हमारे बहुत से श्रोता वरिष्ठ नागरिक हैं भी और बहुत से नहीं भी हैं, लेकिन उनके आसपास तो जरूर वरिष्ठ नागरिक हैं, तो हमें ये बताइए कि वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा किस काम के लिए टोका जाता है और उन्हें वो टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ये हमें बताइए आप, और साथ ही ये भी बताइए कि जिस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उस फिल्म का नाम क्या है, और ये भी बताइए कि आपके लिस्ट में क्या ये गीत शामिल था।
4: क्या
5: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
4: क्या क्या क्या

कल आज और कल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ तक कि आपने तो सारे जवाब हमें दिए हैं कि किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज है और शैली शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। यहाँ तक कि आपने ये भी लिख भेजा कि रणधीर कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और बबीता इस फिल्म में नजर आते हैं। हमारे एक साथी लिख रहे कि आज के युवकों को हम 60 प्लस वालों के विचार अच्छे नहीं लगते, ना ही उन्हें हमारी सलाह उनके मन को भाती है। वहीं हमारे साथी कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर इस दिन शुभकामनाएं सिर्फ ना दें बल्कि अपने वरिष्ठों को समय दें, उनकी बातें सुनें, उनके अनुभवों का सम्मान करें और उन्हें अपने जीवन का सक्रिय हिस्सा बनाए रखें, क्योंकि किसी घर में बुजुर्गों की मौजूदगी केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि उस घर की स्मृतियों, संस्कारों और आशीर्वादों की छांव होती है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ करना चाहते पर देखो ना, जैसा पहले दौड़ते थे अब नहीं दौड़ पाते, और हाँ रस्सी भी तो नहीं कूद पाते। पर जो नहीं कर पाते वो क्यों सोचें, जो कर पाते हैं क्यों ना उससे खुश हों। तो हम वॉक करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, घर के सभी काम कर लेते हैं, अगर सहायिका ना आए तो झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं। वैसे अब हम वरिष्ठ नहीं हैं अभी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं याददाश्त के बारे में, यानी कि वो कह रहे कि याददाश्त के बारे में टोका जाता है जो बार बार, तो वो अच्छा नहीं लगता। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक था बचपन, ये जो गीत है लता जी का गाया हुआ, इसमें बचपन पूरा समाया हुआ है। बचपन को याद करते हुए करते हैं तो एक सुकून सुखद एहसास होता है, लेकिन जब बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक याद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा गाड़ी में सवार हुए बहुत से यात्री सफर बीच में ही छोड़ गए, उनकी यादों की गठरी बांधे हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि अक्सर ये गीत हम जब होंगे 60 साल के, मैं अपनी धनपत्नी को सुनाता हूँ और कहता हूँ बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की, तो धनपत्नी मुस्कुराकर गर्दन हिला देती और मेरे से पूछती है और आप, मैं कहता हूँ कोई शक, हम तो हंसते ही हैं, साथ में बच्चे भी मुस्कुराते हैं। क्या ही बेहतरीन बात आपने कही। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत से साथियों ने बताया कि ये गीत उनकी लिस्ट में तो शामिल था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चांदी से चमकते बाल किसी को अच्छे नहीं लगते, फौरन काले कर लेते हैं। क्या आप भी इनमें शामिल हैं या आप अपने चांदी से चमकते बालों के अनुभवों को सबको दिखाते हैं? चलिए हमें और एक बात जो याद आई जो आपसे पूछनी है वो ये कि क्या बचपन की कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी याद है जो आपके मन में अब भी

ऐसे ताजा है जैसे कल की ही बात हो। तब तक हम आपको सुनाते हैं ये गीत, बताइए किस पर फिल्माया गया है, यानी जो पर्दे पर नजर आते हैं वो कौन है।

कार्यक्रम रिले करी प्रचार कलु विविध भारती विज्ञापन प्रसारण सेवा दिल्ली आकाशवाणी बारिपदा प्रचार करुछु महिला महल कार्यक्रम उपस्थापना शर्मिष्ठा महांती। तेबे आसंतु श्रोता बंधु शुणिबा महिला महल कार्यक्रम।

0: ताका सुबानी संवाद पढ़ुचंती जितेंद्र कुमार नायक मुख्य संवाद यूपीएससी रो 100 वर्षर यात्रा रे व्यापक परिवर्तन घटितले मध्य विश्वसनीयता अटूट रहिछि कहिले प्रधानमंत्री देशव्यापी आजिठारु कार्यकारी हला जन्म ओ मृत्यु पंजीकरण संशोधन आईन पायलट कैप्टन स्मिथ मत्सरंक साहसिकता को उच्च प्रशंसा कले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ओ प्रधानमंत्री स्वच्छता ही सेवा अभियान अधीन रे देशव्यापी पालन करा जाउची एक दिन एक घंटा एक संगे कार्यक्रम एवं एशियो क्रीडा प्रतियोगिता रे पुरुष क्रिकेट वर्ग रे भारत पाकिस्तान मध्ये हेब फाइनल मैच केंद्रीय लोकसेवा आयोग यूपीएससी रो 100 वर्षर यात्रा रे सरकार प्रजुक्ति विद्या एवं पाठ्यक्रम रे ओ पीढ़ी परे पीढ़ी परिवर्तन घटितले मध्य एहि संस्था प्रति विश्वास पूर्ववळी अटल रहिछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछन्ते आज नुवा दिल्ली रो भारत मंडपम ठारे यूपीएससी रो शताब्दी समारोह को संबोधित करी प्रधानमंत्री युववर्गंकु जनसेवा रे शामिल करिवार आवश्यकता उपरे गुरुत्व दैछन्ते सरकारी पदवी प्रति नुहे बरं जनसेवा प्रति प्राथमिकता प्रदान करिवाकु से परामर्श दैछन्ते एकविंश शताब्दीर भारत एक नूतन कर्मसंस्कृति सहित वर्तमान आगक बढ़ुची जहार मूल नीति रही जनकल्याणकारी सक्रिय एवं सुशासन बोली प्रधानमंत्री कहिछन्ते
1: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है
0: कार्मिक साधारण अभियोग पेंशन विभाग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते जे विगत 12 वर्ष मध्य यूपीएससी अनेक माइल खुंट हासिल करिछि ओ अनेक नूतन दिगक जोड़े सहायक होइछि से कहते एक अनुष्ठान माध्यम रे सरकारी निजुक्ति संख्या वृद्धि पाई निजुक्ति प्रक्रिय स्वच्छता आसी जहां जनसाधारण विश्वास को आहरी बढ़ाई से कहते डॉक्टर सिंह आहरी एनडीए रो 12 वर्षर कार्यकाल मध्य यूपीएससी माध्यम रे 65,000 निजुक्ति सुजोग सृष्टि फल अनुष्ठान देश एवं समग्र विश्वर निजुक्ति प्रक्रिया संस्थागुड़िक एक आदर्श स्थान हासिल करिपारिछि सूचनाजोग्य 1926 मसीह स्थापित यूपीएससी रो शतवार्षिकी पालन गत वर्ष अक्टोबर 1 तारीख रु आरंभ होइतला आज अनुष्ठित कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री स्मारकी डाकटिकट स्टाम्प एवं 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमिशन इन इंडिया नामक एक पुस्तक उन्मोचन करिछन्ते कार्यक्रम रे देशर विभिन्न भागर अंशीदार माने जोगदेवा सह राज्य लोकसेवा आयोग गुडिकर अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार उच्चपदस्थ अधिकारी एवं यूपीएससी रो अधिकारी और कर्मचारी माने भाग नैछन्ते जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन आईन आज कार्यकारी होई 1969 मसीहार पूर्व आईनर संशोधन माध्यम रे एही नूतन आईन प्रस्तुत कर जन्म और मृत्यु पंजीकरण रे विलंब को प्रतिहत करिबा एवं समय अनुजाई नागरिक को पंजीकरण दिगरे प्रोत्साहन प्रदान करिबा एही संशोधित आईनर मुख्य उद्देश्य विलंबित क्षेत्र में पंजीकरण पई एही आईन अधीन निर्दिष्ट अधिकारी को दायित्व अर्पण करा जाय छे तबे विलंबित पंजीकरण पई

0: Duk Tang in the bronze medal playoff after bowling out of individual gold contention with a semi-final loss. In squash, India settled for a bronze medal after losing 1-2 to Hong Kong in the women's team semi-final. India were assured of a medal in the Asian Games Sepak Takraw men's quadrant competition after the team entered the semi-finals with a 2-1 win over Myanmar. India's overall tally has reached 63, including 10 gold, 22 silver and 31 bronze. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasizes integrated financial systems for defence management and resource utilization. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers meeting, reviews India-EU FTA progress, and in Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking overall tally to 63, including 10 gold. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां सरकारें तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
2: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का एक सिद्धांत है जनहितैषी सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम

0: जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने ये पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
1: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार

0: को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
2: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
1: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
2: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसे जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों

0: में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ଏତେବେଳେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ।
3: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
4: ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ
3: ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ,
4: ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ଠାରୁ ବଣ୍ଡା ଏବଂ କୋୟାଙ୍କ ଯାଏ, ସବୁରି ଭାଷାରେ
3: କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ।

0: सचिन देवियां फिल्म के गीत में मोहम्मद रफी को आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे। राहुल देव बर्मन का संगीत समाधि फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों के बाद

0: ಹೇಳಿ.
1: नमस्कार सभी सखियों को, सभी सखाओं को, और साथ ही आज हमारे साथ हैं कौन? नेहा.
2: तो आरती जी, नेहा शर्मा का नमस्कार आपको भी और सभी सुनने वालों को भी.
1: बिल्कुल. और नेहा, आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक साथ आए ना.
2: और इतने सारे दिन लेकर आए.
1: आज समझ लो दिनों की, यानी कि दिवस की बहार है पूरी.
2: हाँ,
1: तो हम लेकिन बीच बीच में, बात बात में हम अपने दिवस की बात भी करते जाएंगे. लेकिन सबसे पहले तो हमें बता देना चाहिए कि आज हम कौन कौन से विषय लेके आए, ताकि जो हमारे श्रोता है जो सुन रहे हैं वो अपने विचार हमारे साथ साझा कर सके. तो आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे. और साथ ही क्या लेकर आए हैं?
2: मुझे कुछ कहना है, हमारे साथियों ने कहना शुरू कर दिया है, संगीत का जादू. हमने कहा था इस विषय पर कुछ, तो उन्होंने इतनी सारी बातें कहनी शुरू कर दी है. और उपयोगी टिप्स में आज हम बात करेंगे वृद्ध जनों की देखभाल. हाँ, किस तरह से हो,
1: कैसे करनी चाहिए. कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई साइंस प्रोजेक्ट है.
2: हाँ,
1: बस कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है, अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी सहायता करनी है. बस सहायता, एक सहायक की तरीके से हमें काम करना है, उनके अपने की तरह से काम करना है, बस और कुछ नहीं करना है. तो ये सारी चर्चा हम करेंगे, साथ में बात करेंगे, लेकिन एक गीत सुनने के बाद, है ना.
2: देखिए,
1: संगीत, क्योंकि संगीत का दिन है ना, तो संगीत के दिन की शुरुआत अगर गीत से करें तो सबसे बढ़िया.
2: तो कार्यक्रम में भी संगीत का जादू छाने देते हैं और कार्यक्रम में पहला गीत आने देते हैं.
1: बिल्कुल.

0: आरती जी, संगीत की तो इतनी बातें हो गई, लेकिन आपने जब कहा कि इतने सारे दिवस हैं,
1: हाँ,
0: तो दिन भी ऐसे घूमने लगा हमारा भी। क्या क्या है, कौन कौन से दिवस हैं, जरा बताइए तो, सस्पेंस क्यों है इतना?
1: बिल्कुल, और इतने स्वादिष्ट दिवस है ना,
0: हाँ, हाँ,
1: बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि देखो, एक तो है शाकाहार दिवस,
0: हाँ,
1: यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खाइए, फल फ्रूट, फल नहीं, माफ कीजिएगा, अब हम खा सकते हैं सब्जियां, बढ़िया बढ़िया, वैसे तो शाकाहार में फल भी आता है, सब्जियां आती है, सब कुछ आता है,
0: जब उपवास करते हैं तो बस फलाहार बोल के जो खाते हैं हम,
1: हाँ, वो फलाहार भी वही है, तो सब्जियां हरी हरी खा सकते हैं, बढ़िया, और हमारा खून भी बढ़ाती है, हमारा जो दिमाग है उसको भी शार्प करती है, तेज करती है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो शाकाहार में बहुत सारे गुण भी समाये, और साथ ही हम बात करेंगे, पूछेंगे बल्कि अपने साथियों से जो श्रोता है उनसे, कि उन्हें क्या पसंद है, चाय की कॉफी, वैसे तुम्हें क्या पसंद है,
0: ये क्यों पूछ रहे हैं आप, शाकाहारी में ये सब कैसे आ गए?
1: देखो, एक तो शाकाहार दिवस है, समझो ना, थोड़ी सा जो हम हिंट दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं,
0: समझ तो गए हम भी कि कॉफी या चाय में से क्या पसंद है, तो हम अपना जो जवाब है वो बचा के रखेंगे उस समय के लिए जब हमारे श्रोता अपने जवाब दे देंगे।
1: बिल्कुल,
0: तब
1: आप लोग भी बताइए आपको, हाँ, क्या पसंद है, चाय की कॉफी,
0: फिर पता चलेगा कि आज सखी सहेली के बाद चाय मिलेगी या कॉफी मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: या दोनों ही नहीं मिलेगा।
1: नहीं, कॉफी या चाय में से आप बताइए आपको क्या पसंद है, तो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा दिवस है ना,
0: और जो

0: काहारी दिवस आज है हम बता रहे हैं, तो दिन भी थोड़ा हरा भरा है और शाकाहारी लोगों की मतलब बातें करें, शाकाहारी जिन लोग खाते हैं, मतलब सभी खाते हैं, शाकाहारी तो सब होते हैं क्योंकि सभी एक ना एक
1: शाकाहार के साथ में
0: कुछ कुछ और दूसरे आहार भी लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना शाकाहारियों की, इनकी थाली को देखकर, सब्जियां देखकर डॉक्टर भी बोल देते कि भाई वाह, रंगों का पूरा पैलेट ही यहाँ पे भरा हुआ है। तो विश्व शाकाहारी दिवस में हम यही बात कर सकते हैं कि शाकाहारी भोजन और पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संतुलित खान पान के बारे में सोचने का मौका ये दिन हमें देता है।
1: बिल्कुल, लेकिन आज हम कोई भारी भरकम से आपको भाषण नहीं देने वाले हैं कि हाँ कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आपको जिस कलर की, जिस रंग की सब्जी पसंद है आप खाइए, जो फल पसंद है वो खाइए। और देखिए, खाने के समय भाषण सुनना ऐसा ही लगता है जैसे कि गर्मा गर्म पकौड़े सामने रख, और कोई कहे पहले इसमें से आप कैलोरी गिननी कि आपको कितना इसमें से आपको आपके वजन बढ़ाने वाली चीजें हैं, इसमें ऐसी चीजें वैसी चीजें, तो उस समय तो हमें लगता है ना कि हम बस एंजॉय करें, उसको आनंद उठाएं उस पकौड़ों का। तो वैसे ही है शाकाहार दिवस के बारे में बात करेंगे। तो हम अपनी अपनी बात करिए, आप बताइए कि भाई आपको कौन सी सब्जी पसंद है, क्या खाना अच्छा लगता है आपको, मतलब कौन सी सब्जी को किस तरह से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से बनाएंगे सब्जी को, तो ये बता सकते हैं आप। और साथ ही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपके जो जो प्लेट रहती है उसमें किस तरह रहता है, आलू का, गोभी का, टमाटर का, मिर्ची का, किस चीज का सबसे ज्यादा रहता है बोल वाला?
0: तो लग रहा है आलू ही जीत जाएगा वैसे। लेकिन पनीर भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि पनीर कुछ घरों के लिए तो सब्जी नहीं है बल्कि परिवार का एक सदस्य जैसा होता है। कहते कि क्या बनेगा ते पनीर, कल क्या बना था पनीर, आज क्या बनेगा पनीर,
1: कोई आ रहा है तो भी पनीर, कोई नहीं आ रहा है तो भी पनीर,
0: और बहुत दिनों से खाया नहीं इसलिए भी पनीर। तो पर कुछ अलग अलग पनीर की भी बहुत सी रेसिपी होती है, तो अलग अलग बनाते हैं कि कभी क्या बनेंगे, तो शाही पनीर बनेगा, कभी कुछ पनीर का अलग अलग चीजें, कभी भुर्जी बन जाती है पनीर की। तो पनीर भी अपने आप को रंगों में अलग अलग रूपों में
1: हरा भरा भी पनीर हो जाता है जब हम उसमें कोई हरी सब्जी मिला के बना लेते हैं।
0: और सही बात ये भी है कि शाकाहारी बोलते साथ ऐसे जो कहते हैं ना घास फूस बोलते कई बार लोग, तो वो घास फूस नहीं, ऐसा नहीं कि सलाद की प्लेट लेकर बैठ गए तो ही शाकाहारी। भाई शाकाहारी व्यंजनों की जो बातें हैं वो तो अपने आप में ही है, क्योंकि इतनी सारी विविधता है हमारे ही रसोई में, हम जब देखते हैं शाकाहारी खाने की तो ऐसा लगता है कि खाना खा लें कि इसकी फोटो खींच लेंगे, इतना कलर रहता है, इतना रंग रहता है, तो बड़ा आनंद भी आता है।
1: बिल्कुल, और दाल चावल रोटी सब्जियां फल अनाज दही दूध पनीर मेवे, कई तरीके के जो पौधे होते हैं वो उनपे जो आधारित फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, और ये सब्जियां होती हैं, शाकाहार होता है। तो अगर संतुलित भोजन हो तो शाकाहारी थाली जो होती है वो स्वाद और पोषण दोनों से भरी हुई हो सकती है। और शाकाहारी भोजन में भी संतुलन बहुत जरूरी होता है कि एक ही चीज अब मत खाते रहिए कि हमने पनीर खाने तो पनीर चला ही चला जा रहा है। बाकी चीजों को भी मौका दीजिए अपनी स्वाद को पहचानने का। तो दालें हैं और प्रोटीन के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, और साबुत अनाज हो गए, मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं, और बहुत से आवश्यकता अनुसार कि आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं, उसको भी तरह तरह से बना सकते हैं। तो इससे पौष्टिकता तो आती है और साथ ही विविधता भी आती है खाने में।
0: और हरी सब्जी को देख के ऐसे प्लेट से भागने लगते हैं, बोले अरे यार हरी सब्जी है क्यों खानी है, लेकिन अगर उसको स्वादिष्ट तरीके से हम पकाते हैं तो उसका एक अलग तरह का जायका बढ़ जाता है। और ऐसा लगता है जिसको देख के कल को ऐसे लगता था कि नाक सिकोड़ते थे कि ये नहीं खाना है, वो हमारी पसंदीदा डिश बन जाती है कि ये नहीं बना, चाहे वो लौकी ही क्यों ना हो, क्योंकि लौकी बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है लेकिन लोग उसे खाना नहीं चाहते, उनके कहते हैं कि लौकी कद्दू क्या खाना है।
1: लौकी को ही नहीं, अगर हम दाल में, चन्नी की दाल में डाल के बनाए क्या स्वाद बनती है वो।
0: तो बात है कि अगर जब हम उसको बनाने का तरीका अगर बदल देते हैं तो ये सब्जियां भी बोल सकती कि भाई मैं जब पहले खाने की मेज पे आती तो कैसी शिकायतें होती थी, अब देखो अब मुझे देख के मुंह मत बनाओ, मुझे देख के थोड़ा मौका तो दो। अलग अलग तरह से अब लौकी का अगर रायता बनाया जाए तो कोई मुंह ना,
1: लौकी का कोफ्ता, वाह क्या बात।
0: देखिए लौकी पे ही हमारा कुछ अलग सा ऐसा प्रेम जागृत हो चुका है।
1: कहने का मतलब है कि एक छोटी एक सब्जी जिसपे आप नहीं खाना चाहते वो किस तरीके से कितने तरीके से बन सकती है।
0: तो इस तरह से बन सकती है, व्यंजन विधियों में तो हम बताते ही हैं, लेकिन जब इतनी बातें होगी खाने की, जब ज्यादा बातें हो जाती है ना तो हमें एक गीत चला लेना चाहिए,
1: क्योंकि थोड़ा हटे वहां से
0: दिमाग, और थोड़ा जो मुंह में पानी आ गया उसका क्या किया जाएगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: तो आरती जी, 3 तारीख का जो जश्न है वो तो बड़े जोर शोर से होने वाला है, और सारे सभी जो श्रोता हैं वो भी फेसबुक पेज के जरिए लाइव सुनेंगे, शायद
1: सबको इंतजार होगा,
0: लाइव सुनना तो सुनने तो मिलेगा ही उन्हें।
1: बिल्कुल। और अब हम बढ़ते हैं अगले अपने सेगमेंट की तरफ, जो की है कहानी पद्मश्री की। तो आज हम लेकर आए हैं जिनकी कहानी, वो है लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, और कभी कभी समाज को बदलने के लिए किसी बड़े पद की नहीं, बस एक बड़े सपने की जरूरत होती है, और एक ऐसा सपना जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए देखा जाए जिनकी आवाज उठाने के लिए उनके साहस की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो ऐसी प्रेरणादायक महिला है, क्योंकि इन्होंने बैंक को सिर्फ पैसा जमा करने और कर्ज लेने की जगह नहीं माना, बल्कि उसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान माध्यम भी बनाया। जैसा कि आपने नाम कहा, लक्ष्मी बरुआ हैं ये, और असम की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी महिला है। उनका जीवन विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
1: बिल्कुल। और लक्ष्मी बरुआ का जन्म हुआ आसाम के जोरहाट जिले में हुआ था उनका जन्म, और उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और समाज के लिए बहुत कुछ करने का उनका हौसला जो था वो बना रहा।
0: 1973 में प्रभात बरुआ से इनका विवाह हुआ और इसके बाद इनकी जिंदगी ने

0: नई करवट ली। प्रभात प्रगतिशील सोच के मालिक थे और लक्ष्मी के लिए वो सुलझे हुए जीवन साथी और मेंटोर दोनों साबित हुए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन्हें कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि 1980 में जब वो जोरहाट के वाहना कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई, तब प्रभात ने उन्हें नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया।
1: बहुत बड़ी बात है ये उस समय के लिए खास तौर पर। और विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए काम करने का अपना संकल्प छोड़ा नहीं। ग्रामीण विकास, वयस्क शिक्षा, जरूरतमंद महिलाओं की सहायता और वंचित लोगों के बीच काम करते हुए उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा था कि आर्थिक निर्भरता जो होती है वो महिलाओं के लिए जो उनका जीवन होता है उसको कितना सीमित कर देती है।
0: जी, तो लक्ष्मी बरुआ ने बैंक में काम करते हुए एक ऐसी समस्या को महसूस किया जो आज हमें तो छोटी लग सकती है लेकिन उस समय बहुत बड़ी थी। जैसे कि गरीब और कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो बैंक तक आती थीं, लेकिन बैंकिंग की जटिल प्रक्रियाओं और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कई बार मदद ही नहीं मिल पाती थी।
1: बिल्कुल, और यहीं से उनके मन में सवाल उठा कि अगर बैंक की व्यवस्था इन महिलाओं तक आसानी से नहीं पहुंच सकती तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो महिलाओं की जरूरतों को समझे। और 1983 में उन्होंने जोरहाट के दक्षिण में महिला समिति की शुरुआत की।
0: और महिलाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि छोटी छोटी आय अर्जित करने वाली महिलाओं के पास भी सुरक्षित बचत और वित्तीय जानकारी के पर्याप्त साधन नहीं थे। महिलाओं के लिए बैंक खोलने का विचार उनके मन में 1990 के आसपास आकार लेने लगा था।
1: बिल्कुल, लेकिन सपना देखना तो आसान था इतनी बड़ी बात को, लेकिन उसे सच करना उतना आसान भी नहीं था। लक्ष्मी बरुआ को कई कठिनाइयों और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लगभग 8 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किए और उसके बाद उनका सपना वास्तविकता की दिशा में बढ़ सका और अंततः 1998 में जोरहाट में कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई।
0: और इस संस्था का उद्देश्य केवल बैंकिंग सेवा देना नहीं था, इसका उद्देश्य था महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना, उन्हें वित्तीय जानकारी देना, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना। और ये बैंक अपने स्वरूप में बहुत ही खास था।
1: ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित था और इसके संचालन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैंक ने कम आय वाले लोगों और महिलाओं तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। छोटी बचत से लेकर ऋण और वित्तीय जागरूकता तक इस पहल ने बैंकिंग को उन महिलाओं के करीब लाने का प्रयास किया जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर थी।
0: और एक छोटा सा विचार है आरती जी, और ये छोटे से विचार ने ही धीरे धीरे हजारों खातों और अनेक परिवारों के जीवन को प्रभावित किया। लक्ष्मी बरुआ की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि महिला को सिर्फ सहायता देना नहीं है बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना होगा।
1: यही सबसे बड़ी बात है कि अवसर देना चाहिए उनको, और क्योंकि जब किसी महिला के पास अपनी कमाई होती है, बचत होती है, बैंक खाता होता है और आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास होता है तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता है और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
0: हाँ, और बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है, इसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, धीरे धीरे पूरे समाज पर पड़ता है। और यही कारण है कि लक्ष्मी बरुआ की कहानी केवल बैंक की कहानी नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की कहानी है।
1: बिल्कुल, उनके सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिला। 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से जुड़े सम्मान के माध्यम से कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्य को भी राष्ट्रीय पहचान मिली और लक्ष्मी बरुआ को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और फिर आया वर्ष 2021 जब सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
0: और ये सम्मान उनके लिए ही नहीं बल्कि उन असंख्य महिलाओं के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी के लिए महत्वपूर्ण पहचान बना जिनके लिए उन्होंने वर्षों तक काम किया। लक्ष्मी बरुआ का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा बदलाव वही है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। तो जब महिलाएं काम करती हैं, कहते हैं ना वो जिस तरह की बात है कि महिला अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज शिक्षित होता है, उसी तरह से जब एक महिला ये सोचती है कि महिलाओं के लिए उन्हें कुछ करना है या समाज के लिए कुछ करना है तो बदलाव जरूर आता है।
1: बिल्कुल, और एक बदलाव हम लेके आते हैं कि एक गीत संगीत में से कोई गीत सुन लेते हैं।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: तो आरती जी, हम तो बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे साथियों ने लिखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन सी सब्जियां उनके घर में बनती हैं।
5: अच्छा,
4: तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, हम तो सब्जी आजकल गोभी की ज्यादा खाया करते हैं। कल आलू की सब्जी खाई थी, आलू भी स्वादिष्ट थे। आगरे के थे वो मीठे होते, पंजाब का आलू स्वादिष्ट नहीं होता है। हमें अच्छा। तो आलू एक जैसा ही लगता है सारा।
5: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि सही कहा आपने, आलू ही जीतेगा, सबसे ज्यादा आलू पसंद है हमारे घर में सबको। पनीर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पनीर तो सभी को पसंद होता है, चलिए आपको पसंद नहीं,
4: नहीं, नहीं,
5: तो
4: आप आलू खा सकते हैं। सभी को आलू भी पसंद नहीं होता, सभी को कुछ भी।
5: बिल्कुल, क्योंकि आलू में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, कहते ना, उसमें आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
4: हमारे एक साथी कह रहे, कल ही हमने हमारे घर पनीर बनाया था। छोटी वाली बहन ने बकायदा प्यार से दही, मटर, छोले और आलू मिक्स कर करके बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि आज तो वो उपवास है। फिर क्या हुआ, हो जाएगी।
5: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि प्लेन रोटी के साथ पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है, जैसे कि तुमने बताया था नेहा।
4: हाँ।
5: क्योंकि उसमें मसाले कम जाते हैं और पनीर का रियल टेस्ट मिलता है। ये तो सही बात है, मसाले कम डालो तो उसका जो स्वाद है ना वो निखर के आता है।
4: बिल्कुल, और पनीर की बात भी एकदम निराली है, क्योंकि एक जैसा सफेदी लिए पनीर होता है ना, उसको इतना ज्यादा मसाले में डालने में ऐसा लगता है कि कुछ तो बेचारे को हम बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना। हमारे एक साथी जो अलग अलग बातें तो लिख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए

0: सब्जी की जो बातें उन्होंने लिखी, आलू आलू सबके साथ चल जाता है,
1: सबके साथ
0: तो आलू हमें सिखाता है कि हमें उसकी तरह बनना चाहिए कि हम सबके साथ घुल जाए और अकेले भी हमें खाया जा सके, खाया तो नहीं जा सके बट अकेले भी हम चल सके अपने जीवन में और सबके साथ मिलकर भी चल सके। लेकिन पनीर को हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है ना, खाली पनीर भी खाया जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसे सेक के खाते हैं, भले चाट मसाला डाल के खाते हैं, लेकिन तो पनीर उसका जो टेस्ट बढ़ जाता है
1: वो तो है नहीं है, लेकिन पनीर को बैगन के साथ नहीं खा सकते ना, आलू को आप बैगन के साथ भी खा सकते हैं,
0: आलू को पनीर के साथ भी खा सकते हैं,
1: बिल्कुल आलू को पनीर के साथ और खा सकते हैं, और साथ ही जो बैगन के साथ में आलू खा सकते हो, ऐसी सब्जियां जिनके साथ नहीं पनीर नहीं खा सकते उनके साथ भी आलू चल सकते हैं, यानी कि आलू जीतता है।
0: तो आलू को हम जिताएं उससे पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
1: सखी सहेली,
0: सिर्फ हम आलू गोभी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संगीत।
1: हाँ बिल्कुल, आलू गोभी की हमने बात कर ली है, अब हम संगीत पे आते हैं। तो संगीत कुछ सुरों का मेल भर नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाता है। यानी कि जब हम गीत सुनाते हैं, जब कहते हैं ना कि हमने कार्यक्रम के बारे में बता दिया, सब विषय बता दिए, अब पहले गीत, यानी कि शुरुआत हम जब कार्यक्रम की संगीत से करते हैं ना, तो पूरा जो कार्यक्रम है वो संगीतमय हो जाता है ना, एक रिदम में आ जाता है।
0: हाँ, जब हम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं तो बीच में एक संगीत आता है, तो एक अलग सी अनुभूति भी होती है, भाव अलग हो जाते हैं।
1: और कभी कोई धुन हमें हंसा देती है, तो कभी वही धुन अनकहे आंसू भी ले आती है।
0: और कभी ऐसा भी महसूस किया हो हमारे श्रोताओं ने कि कोई पुराना गीत अचानक जब सुनाई देता है तो हम बरसों पीछे लौट जाते हैं, वही कमरा, वही मौसम, वही चेहरे और वही अधूरी सी कहानी। संगीत के पास यादों को सहेज कर रखने की एक अनोखी शक्ति होती है, और एक धुन जिसे हमने शायद वर्षों से नहीं सुना है, लेकिन पल भर में अगर
2: goal after his effort took a deflection off a Pakistan stick. Pakistan had one last chance in the closing seconds, but a missed trap ended their hopes as the hooter sounded and India was able to solidify their position into the gold medal match.
3: बिल्कुल, और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कहीं आज उलट फेर न हो जाए, स्कोर 3-3 की बराबरी पर था, लेकिन अंतिम समय में भारत की तरफ से जो गोल आया उसने उस सिलसिले को बरकरार रखा जो 2014 से लगातार चलता चला आ रहा है। एशियन गेम्स में हम कभी भी 2014 के बाद से नहीं हारे हैं पाकिस्तान से, और हम आपको ये भी बताएं कि 2016 में हमारी टीम अंतिम बार पाकिस्तान से हारी थी साउथ एशियन गेम्स में गुवाहाटी में, उसके बाद से जीत का सिलसिला जारी है, और आज भी एक नजदीकी मुकाबले में हमने जीत हासिल की है, अब गोल्ड मेडल की उम्मीद है।
2: राइट, एंड आई थिंक धर्मेंद्र, आपके पास कुछ अपडेट्स हमारे स्क्वाश की दुनिया से भी आज देने के लिए होंगे।
3: बिल्कुल, स्क्वाश में समय भारत और मलेशिया का पुरुष सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है, अभी दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर है। अभय सिंह एन ने जो है शुरुआत की थी एन जी यांग योव के खिलाफ, और वो पहला मैच 3-0 से हार गए, स्कोर 8-11 रहा। अभय सिंह ने जिस तरह से ये मुकाबला गवाया, फिर वीर चोटरानी ने भारतीय टीम को वापसी कराई जब संजय जीवा के खिलाफ उन्होंने मैच जीता, चोटरानी ने मैच 3-0 से जीता, स्कोर 11-4 11-8 11-5 रहा। और इस समय वी सेंथिल कुमार का मैच ए चंद्रन के साथ चल रहा है, मुकाबला कांटे का है, दोनों ने एक एक गेम जीता है, और इस समय तीसरा गेम चल रहा है जिसमें स्कोर सेंथिल कुमार के पक्ष में 6-5 है।
2: राइट, आपको बता दें स्पेक्टाक्रो की दुनिया से भी कि इंडिया हैव सिक्योर्ड अ मेडल इन द मेंस क्वाड्रेंट स्पेक्टाक्रो स्टेक स्पेक्टाक्रो आफ्टर बीटिंग म्यांमार 2-1 इन द फाइनल ग्रुप मैच। द विक्ट्री सेंड्स इंडिया इनटू द सेमीफाइनल्स एंड कीप्स देयर अनबीटन रन इंटैक्ट अक्रॉस 3 ग्रुप मैचेस। इंडिया फिनिश्ड टॉप ऑफ द ग्रुप एंड आर डेफिनेटली अश्योर्ड ऑफ अ प्लेस ऑन द पोडियम।

0: और कुश्ती में इतिहास लिखा जाना है आपसे कुछ देर बाद, क्योंकि पुरुषों की ग्रीको रोमन शैली के 97 किलो ओवर के फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए नितेश सिवाच का सामना जापान के नकाजातो यूपी से होगा। इससे पहले नितेश ने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज करके एशियन गेम्स में भारत के लिए कुश्ती का एक पदक पक्का कर लिया। नितेश ने हांगझोउ एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंगोलिया के गंगकुयाग को सेमीफाइनल में 9-0 से हराया। नितेश ने इसी साल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। हम आपको बता दें कि 64 साल बाद भारत का कोई ग्रीको रोमन पहलवान फाइनल में पहुंचा है।
1: राइट, एंड आल्सो फॉर ऑल द लवर्स ऑफ क्रिकेट आउट देयर, इंडिया वाज एबल टू डिफीट टुडे श्रीलंका बाय अ ह्यूज मार्जिन, posting 169 on board, with Sri Lanka requiring 170 to win, but Sri Lanka completely bundled out for just 45 runs, and as a result, India Pakistan now are set to meet in the finals, which will happen on Saturday in the ongoing Asian Games 2026. That is all that we had in this live update at 3:30 PM. We shall be tuning you right back in at 4:30 PM. Filhal ke liye mujhe Sakshi Madwal aur Dharmendra ko dijiye ijazat. Goodbye and thank you.
2: संगीती हूँ, दुखी होती हूँ तो संगीत सुनती, बहुत गुस्से में होती तब भी संगीत चलता ही रहता है। हालांकि मेरी मम्मी बोलती घर में कुछ भी हो जाए इसका रेडियो बंद नहीं होता। वैसे आजकल की बात नहीं है, जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी रेडियो सुने बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती थी।
3: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो और संगीत, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि संगीत केवल फिल्मी संगीत तक ही सीमित नहीं है, उसको इतना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर तरफ व्याप्त है संगीत। हवा की रागनी में घुला है संगीत, झूमते वृक्षों में, बहते दरिया में है संगीत, भंवरे की गुंजन में है संगीत, मंदिर की बजती घंटियों में है संगीत, गौरी की बजती पायल खनकती चूड़ियों में है संगीत, आसमां से बरसती बूंदों में है संगीत, पक्षियों के मधुर कलरव में है संगीत। सच में रूह का सुकून है संगीत।
2: वाह क्या बात हमारे साथियों ने कही है। तो इन संगीत से जुड़ी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी है, पर क्यों ना इस वक्त एक संगीत
3: एक बिल्कुल गीत तो सुनना ही चाहिए। जी।

0: मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: और मन झूमने लगता है आरती जी जब संगीत की बात हो। हमारे एक साथी लिखते हैं कि संगीत एक ऐसी अलौकिक कला है जो बिना किसी भाषा और सीमा के सीधे दिल से जुड़ती है। इसे सुरों और ताल का मेल नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है।
4: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जब भी अपने बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि जब भी मेरे पतिदेव से जब मैं नाराज होती हूँ या गुस्सा होती हूँ तो वो मुझे गीत गाकर मनाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम से खिलखिला उठती हूँ। भाई क्या बात है।
3: और हमारे एक साथी कह रहे कि संगीत एक ऐसा जादू है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह देता है। इसकी मधुर धुनें कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं तो कभी आंखों में पुरानी यादों की नमी भर देती है। संगीत में मन को सुकून देने, थकान मिटाने और उदास दिल को संभालने की अद्भुत शक्ति होती है। कोई धुन हमें बचपन की गलियों में ले जाती है तो कोई गीत किसी अपने की याद दिला देता है। सुर, ताल और शब्द जब मिलते हैं तो भावनाओं की एक खूबसूरत दुनिया बन जाती है। शायद इसलिए संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। यही संगीत का असली जादू है जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है।
4: क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि मैं तो लोक गीतों की भी बहुत शौकीन हूं और प्रादेशिक हो या किसी भी भाषा को उनको लोकगीत बहुत पसंद है। तो गीत वो तो कोई भी हो सकता है, लोकगीत हो या किसी भी भाषा का हो, संगीत तो संगीत है फिर। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जहां शब्द थम जाते हैं वहां संगीत बोलना शुरू करता है। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहां शब्द खामोश हो जाते हैं वहां संगीत दिल की भाषा बनकर बोलता है।
3: तो हमारे कई साथियों ने एक ही तरह की बातें लिखी क्योंकि संगीत से जुड़ी जो भावनाएं हैं वो एक तरह से हम सबकी एक ही है। हमारे कह रहे हैं कि सुर ना सजे का गांव में एक साथी ने लिखा है, सुर के बिना जीवन सूना। संगीत का जादू वो अदृश्य शक्ति और प्रभाव है जो बिना किसी भाषा की सीमा के सीधे मन और आत्मा को छू लेता है। ये भावनाओं को जगाने, थकान मिटाने और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। संगीत हमारी गहन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें कई बार साधारण शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। तनाव भरी भागदौड़ के बीच संगीत सुनने से मन को असीम शांति और ताजगी मिलती है। पुराना संगीत सुनते ही इंसान पल भर में अपनी पुरानी यादों और बीते हुए पलों में पहुंच जाता है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये हर संस्कृति और देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन यहाँ आरती जी एक बात कहना जरूरी है कि भाई संगीत तो बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं, पर ऐसा नहीं हो कि हम जब सड़क पे जा रहे हैं तो संगीत कानों में हमने लगा लिया, हेडफोन लगा लिया और हमने सोचा कि चलो सुनते सुनते ही जाएंगे आज हम, और उस वक्त संगीत आपको अगर कहीं किसी दूसरी दुनिया में या किसी दूसरी यादों में आपको खोने के लिए मजबूर कर देगा तो सड़क पर आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
4: बिल्कुल। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी, ये भी कोई भी चीज सावधानी के साथ अगर करी जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो सड़क पर चल रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप संगीत को थोड़ा

0: देर की रोक दें, तो वो आप जब कहीं बैठे हैं या कहीं आप आराम से अपने घर में या इस तरह से कभी हैं तो आप वो तब सुनिए कहीं, लेकिन बाहर जाते समय या रेलवे स्टेशन में कई लोग ट्रैक पे जब चलते हैं है ना, ट्रेन की वो पार कर रहे होते हैं रेल लाइन के, तो वहां पे भी आप ये सब मत लगाएं तो अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है।
1: हाँ, और अगर आप सार्वजनिक स्थान पर हैं और सफर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने एकदम जोर से जो लगा देते हैं ना संगीत की भजन, आप भजन भी सुन रहे हो, चाहे कोई बहुत ही अच्छा संगीत भी आप सुन रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि किसी और को भी वो संगीत पसंद आ रहा हो। और तेज आवाज में जब संगीत चलाया जाता है तो कभी कभी जो उसकी जो खूबसूरती है वो खो जाती है, तो वो भी आपको उससे भी बचना चाहिए।
0: और अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को भी हो सकता है किसी को खराब या किसी को परेशानी हो रही हो, कोई बीमार हो या कोई परेशानी हो सकती है, तो संगीत को उतना ही सुनिए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो।
1: तो संगीत को जो मधुरता उसकी है उसकी मधुरता बनी रहे, बस इसका ध्यान रखना चाहिए,
0: जैसे लड़ाई झगड़े ना हो। और दूसरी चीज है कि आप, क्योंकि आप बाहर लगा अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय आप तेज आवाज में सुन रहे हैं तो हो सकता है दुर्घटना का कारण बन जाए, कोई सामने वाले को किसी को परेशानी हो जाए, तो आप चीजों को ध्यान में रखते हुए आप संगीत को सुनिए। और एक हमारे साथी हैं जो लिख रहे हैं कि संगीत केवल सात सुरों का संगम नहीं है बल्कि आत्मा की भाषा है जो बिना किसी शब्दों के सीधे दिल तक पहुंचती है। बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने भी।
1: बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो साथी हैं उनकी भावनाएं और हमारी भावनाएं बिल्कुल मिल रही है आपस में, क्योंकि एक तरह से संगीत के लिए अगर कहा जाए तो कुछ यही बातें हम कह सकते हैं जैसे भावनाएं हमारे साथियों ने भेजी हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर, मतलब हम दोनों का कहने का ये अर्थ है कि हम सब मिलकर एक गीत सुन लें।
0: बिल्कुल, गीत सुनते हैं संगीत के समय।

0: तो आरती जी ये बातें तो हो गई, लेकिन एक जो सबसे जरूरी बात है वो तो हमने की ही नहीं।
1: कौन सी जरूरी बात नहीं की हमने?
0: इतने सस्पेंस आपने ले आया, लेकिन वृद्धजनों की देखभाल के उपयोगी टिप्स जो हमें देने थे और हमारे साथियों ने ढेर सारे कमेंट्स के जरिए
1: हम उसी
0: बताया।
1: पे आ रहे हैं, हम लोग उसी पे तो आ रहे हैं अब। और क्योंकि हमारे साथियों ने कितना सारा तो लिख के भेजा है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, तो हम ले लेते हैं अपने साथी का पहला कमेंट जो लिखते हैं कि

0: कमेंट जो लिखते हैं कि सभी को वरिष्ठ नागरिक दिवस पर शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। वैसे देखा जाए तो इन्हें स्वस्थ और हर हाल में खुश रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है, पर आजकल के जो युवा वयस्क हैं वे तो समझदार हैं पर इन्हें शायद और जागरूक होने की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को आदर सम्मान और हर तरह से उनका ख्याल रखने की जरूरत है। एक तरह से नई पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, उनके पास बहुत सारे अनुभव तो होते ही हैं।
1: और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे घरों में कहा जाता है बुजुर्ग हमारे दरवाजे की शोभा होते हैं, तो उन्हें अपनी शोभा बनाएं, घर के कोने में पड़े हुए शोपीस नहीं बनाएं। और एक और साथी कह रहे हैं कि आज का दिन बुजुर्गों की देखभाल और उनकी देखभाल की जागरूकता के लिए मनाया जाता है, तो उन्होंने इसकी हमें बधाई दी है।
0: अच्छा, और साथ ही हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि मेरे मम्मी जो 83 वर्ष की आयु की हैं वे मेरे साथ रहती हैं और वो वॉकर से चलती हैं और उनको मतलब खाने में परेशानी होती है कि उनके दांत भी नहीं है, तो लिखते हैं कि मेरी वाइफ उनको सब खाना क्रश करके मतलब पीस के देती हैं, उनको ब्रश स्नान जैसे सारे कामों में हेल्प करते हैं वो और दवाई वगैरह सब अच्छे से देते हैं। ये सब चीज़ें लिखी है कि पूरी चीज़ें सब काम करते हैं उनका। उनके पास सादा कीपैड का फ़ोन है, उनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो मैंने अखबार लेना और टीवी से केबल और मतलब उनको कनेक्शन चालू करवा दिए ताकि उनका टाइम पास हो और दुनियादारी से वो अपडेट रहें। तो उनसे वो बात करते हैं जब शाम को अपने जॉब से आते हैं, तो वो बात भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने साथ में अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वो बुजुर्ग हैं उनके साथ में बैठना, उनके साथ बातें करना, खाना पीना, यही चीजें हैं बस देखभाल के लिए, और कुछ आपको नहीं करना होता है कुछ ऐसा।
1: हमारे साथी वही कह रहे हैं कि बुजुर्ग होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि ये जीवन का एक सम्मानित और सुंदर पड़ाव है जिसपे अनुभव की परिपक्वता और गरिमा होती है। बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव और ज्ञान होता है जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। वे हमारे समाज की अनमोल धरोहर है जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से परिवार और समाज को सींचा है। हर उम्र की एक गरिमा होती है जिसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करके खुशी से अपना कर जीना चाहिए।
0: एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि वृद्ध जनों की देखभाल की बात मैं क्या करूं जब मैं खुद 75 पार कर चुका हूं और घर में तो सभी दादा कहते ही हैं। अब विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़े हमारे सभी साथी भी दादा कहकर पुकारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। घर के सदस्य सभी मेरी अच्छी देखभाल रखते ही हैं, बाकी मैं खुद अपनी देखभाल रखता हूं। रोज सुबह विविध भारती जागो सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूं, शाम को इवनिंग वॉकिंग करने जाता हूं और रात ढलती जाए रात सुनते हुए शुभ रात्रि हो जाती है। अब मैं सखी सहेली शुरू होने से पहले एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ, तो अपनी झपकी से इन्होंने देखिए झपकी भी अपनी तोड़ी और हमारे लिए लिखा भी इन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हमारे साथी ने लिखा है कि वृद्धजनों की देखभाल उनके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और भावनात्मक जुड़ाव का ध्यान रखकर पूरी गरिमा और स्नेह के साथ करनी चाहिए। बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए मुख्य बिंदु उन्होंने बताया कि रक्तचाप, मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियां अगर हों तो समय समय पर जांच कराएं, डॉक्टर जो निर्देश दें उसके अनुसार उन्हें दवाई दें, भोजन में प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, ताजे फल और हरी सब्जियां शामिल करें, पानी की कमी से बचाने के लिए उन्हें समय समय पर पानी पिलाते रहें और इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्हें अकेला न रहने दें। कुछ कमियों के बावजूद परिवार में एक सहारे के साथ बहुत खुश रहते हैं हमारे जो वृद्धजन होते हैं, तो उन्हें बहुत लग्जरी सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि प्यार और देखभाल सम्मान की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, वो सम्मान आप प्यार देते हैं तो बस वो देखभाल हो गई, इससे ज्यादा बड़ी देखभाल तो और क्या होगी जब आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा गीत सुन लें।

0: तो बहुत शुक्रिया, हम किस लिए कह सकते हैं कि हमारे साथी चाय को पसंद करे, कॉफी को नहीं।
1: वैसे आज कॉफी दिवस है लेकिन हाँ। चाय ने बाजी मार ली है।
0: कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत गया। आप आपकी चाय जीत गई तो कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत
1: आलू भी जीता है।
0: और हमारे एक साथी लिख रही कि चाय मुझे बहुत पसंद है, सुबह ब्लैक कॉफी पीता हूँ। देखो अच्छा। कॉफी पी रहे हैं वो और कह रहे नाश्ते के बाद दूध वाली चाय। इतनी चाय की बात हो रही है, अभी कोई आया तो चाय तो मुझे बनाना ही है। कॉफी ज्यादा पी लेता हूँ, खासकर शाम को, तो रात को मेरी नींद गायब जाती है। मतलब मिली जुली सरकार चल रही है, इन्हें कॉफी और चाय दोनों पसंद आ रही है,
1: चल रही है। तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, आइस टी भी पसंद है इनको। और ये जो भी चीजें बनती हैं घर में खा लेते हैं, इन्होंने बोला ये टिंडे भी खा लेते हैं। इन्होंने सब्जियों के बारे में बताया कि ये सब्जियां भी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं, तो भरवा टिंडे, भरवा शिमला में चौ, सच बोलूं तो करेले की सब्जी भी फेवरेट है। क्या बात है, सच में
0: कुछ हमारी टीम के लग रहे हैं। और हमारे एक साथी ने कहा मुझे चाय बहुत पसंद है, जब भी कभी यार दोस्त मिलते हैं तो चाय की चुस्की तो होती है, बैठे बैठे गप्पे हो जाती है, और इस बीच कुछ खाने को हो जाए तो कचौड़ी या दाल मंगोड़े की बात ही क्या। मतलब प्रोग्राम के बीच में अगर खाने की बातें होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें जाके चाय पकौड़ी कुछ खाना चाहिए। अब हमें ये सोचना भी पड़ेगा कि घड़ी भी आज हमारा साथ दे रही है, तो घड़ी भी ये इशारा कर रही है कि हम जाएं चाय पकौड़े खाएं, कॉफी भी पी
1: कौफी,
0: सकते हैं।
1: कॉफी पीएंगे, आज तो कॉफी पीएंगे, आज तो कॉफी पीएंगे क्योंकि आज कॉफी दिवस है, तो कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी हमें।
0: तो ये भी बताते चले कि कॉफी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 2015 में पहली बार मिलान में इटली में इसे मनाना शुरू किया था उन्होंने, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लाखों किसानों और श्रमिकों का समर्थन करना था जिनकी आजीविका इस फसल पर निर्भर करती है। और फिलहाल ये निर्भर करता है कि समय तो कह रहा है कि बिल्कुल अब आप अलविदा कह दें, तो स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, विभारती के स्टूडियो नंबर 1 मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सबसे पहले तो ये टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 02-2867-0288 यानी 02-2867-0288। दूसरा टेलीफोन नंबर है 02-4002-4662 यानी 02-2400-2462। ये दोनों बड़े काम के नंबर हैं क्योंकि इन्हें जब आप सोमवार को दिन में 11 बजे डायल करते हैं तो हम विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से कहते हैं हेलो फरमाइश और फिर आपसे करते हैं बातें और पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। तो शुरू करते हैं आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सिलसिला ये बताते हुए कि रिकॉर्डिंग सोमवार को होती है दिन में 11 बजे से। आज का पहला कॉल ये रहा। हेलो फरमाइश
1: जी। यूनुस जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, रामनगर गुना मध्य प्रदेश से।
0: नरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम इन दिनों में आपको अच्छे लगे हैं?
1: इन दिनों में अच्छे लगे हैं सबसे पहले तो यही है हेलो फरमाइश, और आपने फिर से शुरू किया है सखी सहेली का जो हेलो सहेली कार्यक्रम, वो भी लाजवाब है, पसंद आ रहा है। और जो पत्रों पर आधारित मन चाहे गीत से शुरू हुआ उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम तो विविध भारती में बहुत सारे हैं और ज्ञान और मनोरंजन का विविध भारती
0: अब अपनी यात्रा के 69 बरस पूरे करते हुए 70वें बरस में प्रवेश कर रही है 3 अक्टूबर को। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बस यही कहना चाहता हूँ कि विविध भारती ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और विविध भारती से सीखकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं वो मनोरंजन तो उनमें होता ही है लेकिन ज्ञान से भरपूर होते हैं।
0: जी बहुत शुक्रिया। बताएं गुना शहर की क्या स्थिति है, बारिश वारिश खत्म हुई है?
1: इस बार बारिश तो कम हुई है सर, लेकिन हाँ फसल तो अब पककर तैयार हो गई है और कट रही है, कहीं कहीं कटने को भी तैयार है। और मक्का की फसल ज्यादातर होती है, पहले सोयाबीन की फसल होती थी लेकिन क्या है कि पिछले कुछ सालों से सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो फिर किसान भाई मक्का की फसल लगा रहे।
0: अच्छा, अब बताइए आप कौन सी फरमाइश लेकर आज हाजिर हैं?
1: जी फरमाइश है मुकेश और लता जी की आवाज में शोर फिल्म का गाना है एक प्यार का नगमा है मोजों की रवानी है।
0: जिंदगी का दर्शन छिपा हुआ है इस गाने में, संतोष आनंद के बोल हैं ये। चलिए बहुत शुभकामनाएं, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार यूनुस जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं बीकानेर गंगा शहर से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ सर।
0: अरे वाह उत्तम जी, उत्तम हुआ कि आपका कॉल लग गया।
1: जी सर, और पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है सर।
0: जी जी जी, मुझे बताएं कि ये जो गंगा शहर है ये कहाँ है और ये गंगानगर से कितना अलग है?
1: ये गंगानगर तो अलग जिला है सर।
0: अच्छा।
1: और अपना जो गंगा शहर है ना, ये बीकानेर का ही उपनगर है, बीकानेर का ही एरिया है गंगा शहर।
0: अच्छा क्या बात है, और बीकानेर तो भाई बहुत ही अलबेला शहर है।
1: बिल्कुल सर, हमारे शहर के खाने पीने की चीजें बहुत फेमस हैं।
0: बिल्कुल बाकायदा, और वहाँ की अपनी एक संस्कृति है।
1: बिल्कुल है, पुराना शहर है सर।
0: जी
1: पकौड़ी, खाने पीने की सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा फेमस है सर हमारे यहाँ की, नमकीन।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी इतनी सारी बीकानेर की बातें हो रही थी तो एक कोई लोकगीत नहीं सुनाएंगे तो फिर ये कॉल तो सुना सुना हो जाएगा।
1: जी सर, मेरी आवाज तो वैसे खास नहीं है।
0: फिर भी कोशिश कर लीजिए।
1: बन्ना रे भागा में झूला गालिया।
0: अच्छा बहुत ही मशहूर है ये ना। हाँ बिल्कुल
1: जी, राजस्थानी सॉन्ग बहुत फेमस है सर यहाँ के।
0: बिल्कुल बहुत ज्यादा, और वहाँ के कई गायक जो हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं।
1: बिल्कुल हुए हैं सर।
0: आप मुझे बताएं कि आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप?
1: तोबा कैसे है नादान घुंगरू पायल के।
0: ओहो क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश की है आपने। तो चलिए बातों का सिलसिला खत्म करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना बीकानेर में।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, हम नारायण कुमार पटेल बजहा धमकरिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, क्या बात है। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना हमको जो है हीर राँझा का ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।
0: इतना ज्यादा निराश क्यों हो रहे हैं भाई? ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं, आवाज भी थकी हुई लग रही है।
1: मुझे अच्छा लगता है मोहम्मद रफी का गाना सुनने में, अच्छा लगता है, निराश नहीं हो रहे हैं।
0: अरे भैया, हम तो घबरा गए थे कि आप इतना आराम से थके हुए बोल रहे हैं ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं। हम तो अभी आपको समझाने वाले थे।
1: नहीं नहीं सर, समझाने वाले नहीं थे, इधर थोड़ा हम अपना गांव तरफ में भी खाली थे।
0: अच्छा,
1: वो आप लगाने लगे तो इस टाइम आप ही से बात हो रही थी, हमने सोचा कि फोन लगाएं आपसे, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी बात करने के लिए। हम 1995 से रेडियो सुन रहे हैं, पहले रेडियो सुनते थे, मोबाइल ऐप पे सुनते हैं।
0: अच्छा, ये बताइए खेत वेत सब जगह चलता है विविध भारती फिर?
1: हाँ सर, एकदम क्लियर, चाहे जहाँ जाओ। इस समय हम धान के खेत में टहल रहे हैं, धान फूट गया है।
0: अच्छा,
1: आंधी तूफान आया जिससे कुछ धान गिर गए हैं, नुकसान हो गया है।
0: जी जी, समझ रहे हैं, मौसम खराब हो गया ना अचानक इसलिए। अच्छा, हमें बताएं विविध भारती, इतने ध्यान से इतने सालों से आप सुनते रहे, तो वक्त के साथ जो बदलाव आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है?
1: जी बहुत बढ़िया बदलाव आया, क्योंकि हम उस जमाना जानते हैं जब रेडियो शॉर्ट वेव पे आता था, कुछ आवाजें क्लियर नहीं आती थी, सतरा की आवाज जो है धीमी हो जाती थी, तेज होती थी, फिर उसके बाद 2:30 बजे तक वो शॉर्ट वेव पे ये प्रसारण बंद रहता था, FM पे चलता था हमारे यहाँ।
0: जी,
1: फिर वो FM जो है दो बैंड के रेडियो होते थे, शॉर्ट वेव और मीडियम वेव, उसमें एक प्लेट 100 रुपए तब लगती, तब 40 रुपए मजदूरी थी, तो 100 रुपए की प्लेट लगा दिया करते थे, तो वो स्विच रहता था, उसको स्विच ऑन कर दो एरियल लगा रहता था, ऊपर कर दो तो साफ क्लियर FM यहाँ हमारे यहाँ प्रयागराज 14.3 MHz पे सुनाई देता था। फिर उसके बाद एक बॉक्स आने लगा, उसमें स्पीकर और FM से बिजली जो बिजली बचता था वो कोई गोमती में दुकान में कमरे में लगाए रखते थे, और पढ़ने वाले बच्चे भी कमरे में लगाए, तो हम रेडियो सुनते थे। फिर उसके बाद धीरे हम कक्षा 2 में थे तब से यानी सुन रहे हैं, जब से यानी हमको संभाला है हमने।
0: अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमारे आते हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको ज्यादा पसंद रहे हैं?
1: जी, आज के फनकार हो गया, हेलो फरमाइश, उसके बाद जो है हमारे मेहमान, सेहतनामा हो गया है, एक सखी सहेली आता, अब तो मन चाहे गीत भी शुरू हो गया है जिसमें हम पत्र डाल भी चुके हैं।
0: अच्छा, बढ़िया।
1: हाँ जी, और एक आपका जिज्ञासा जो था वो तो एकदम समझो मजा ही आ जाता है सुनकर।
0: अरे बहुत शुक्रिया, तो फिर अब हमको समझ में आ गया कि आप ठीक ठाक हैं, मतलब सिर्फ गाना ही था, ऐसा कोई मन की हालत ऐसी नहीं है?
1: गाना ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, हम अपने आप में खुश रहते हैं।
0: बस ऐसे ही जोश में रहना है ना, भले गाना अपन ये वाला सुन लेंगे। ठीक है, सुनाते हैं आपको ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन काम की तो है ना?
1: हाँ सर।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नाम विशाल यादव है और मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा विशाल जी, सब ठीक है?
1: हाँ बढ़िया सर।
0: और इंदौर की क्या हालचाल है?
1: इंदौर के बढ़िया, मौसम अभी खुशनुमा है और थोड़ी बारिश अभी बंद है।
0: अच्छा, हमने तो सुना था खूब बारिश हुई पिछले दिनों इंदौर में।
1: हाँ पिछले महीनों में हुई थी, पर अब नहीं हो रही है, अभी थोड़ी बारिश की थोड़ी प्रॉब्लम है इधर।
0: अच्छा अच्छा, और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: सर मैं रेडीमेड के सिले का काम करता हूँ इंदौर में, और बढ़िया चल रहा है।
0: और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: हाँ बिल्कुल सर, आपके तो खास करके।
0: अच्छा ये बताइए कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है?
1: मेरी फेवरेट सिंगर लता जी है और आशा जी।
0: क्या बात है, तो उनके गानों की फरमाइशें आप तो फरमाइश कार्यक्रम में करते रहते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और लता जी का तो जन्म ही इंदौर में हुआ था भाई?
1: हाँ इंदौर में हुआ था, हम जानते हैं ना, उनके शराब से मतलब गाने सुनते रहते हैं, और जैसे कुछ उनके कार्यक्रम वगैरह भी आते हैं।
0: हाँ
1: वो भी सुनते हैं।
0: इंदौर का जो फूड कल्चर है वो तो बड़ा कमाल है, तो इन दिनों जो है वो कौन कौन से व्यंजनों का मजा लिया जा रहा है?
1: सर हमारे यहाँ सराफा फेमस है, तो अभी जैसे अभी मौसम के हिसाब से भुट्टे का कीस वगैरह अच्छा चलता है।
0: और वो कचौड़ी?
1: बिल्कुल, यहाँ पे कचौड़ी और समोसे ये चीज तो फेमस ही है सर यहाँ पर।
0: बिल्कुल, जैसे इंदौर को याद करो तो अपना एक फूड कल्चर याद आता है ना।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ खाने पीने की बहुत फेमस चीजें हैं, यहाँ
0: कोई एंड नहीं है खाने पीने का।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो ये बारिश के मौसम में दाल बाफले के मजे लिए जा रहे हैं?
1: हाँ लिए जा रहे हैं सर, ये भी हमारे सराफे में बहुत फेमस है।
0: अच्छा, तो इंदौर वासी तो निकल पड़ते होंगे सराफे की तरफ जब मन चाहे।
1: हाँ बिल्कुल, रात को 4 बजे तक चालू रहता है सर ये।
0: बहुत सही।
1: ये गाना सुनना सर मुझे।
0: कौन सा?
1: राजा और रंग की मूवी का, मेरा नाम है चमेली।
0: ओके,
1: आवाज में
0: क्या बात है। तो चलिए फिर आपको सुनवाते हैं राजा और रंग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी, मैं आरिफ खान मंसूरी बोल रहा था भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: आरिफ खान मंसूरी साहब, आपकी बहुत फरमाइशें आती हैं।
1: सर आपसे मेरी 15 साल पहले बात हुई थी सर।
0: अरे नहीं, यहाँ नहीं आती हैं, वो फेसबुक पे आती हैं, चिट्ठियों में आती हैं।
1: बाकी तो सब में आती हैं, और मैंने आपसे बहुत साल पहले बात हुई थी।
0: अच्छा ऐसा है। हाँ
1: सर,
0: भोपाल के किस इलाके में हैं आप?
1: सर भोपाल के कोलार इलाके में सर हम।
0: अच्छा अच्छा, बताइए क्या हालचाल है आपके?
1: सर बढ़िया है, मैं टेलर हूँ
0: जी,
1: और आरती से मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ
0: जी,
1: और 2005 और 2010 के बीच में मैंने मुंबई में 100-200 फोन लगाए होंगे सर कम से कम।
0: अरे बाप रे, ये तो रिकॉर्ड हो गया भाई।
1: और जितने भी आगे थे उस टाइम के, कमल शर्मा जी हो, शहनाज जी हो, चाहे ममता जी हो, जितने भी आगे थे सबसे मेरी बात हो चुकी थी।
0: और मेरे से?
1: और सर आपसे 2-3 बार आपसे बात हुई थी सर मेरी।
0: अच्छा
1: सर, क्या है कि मैं जैसे आपसे आज मेरी बात हो रही है तो मैं डायरी में नोट वगैरह रख लेता हूँ, तो मेरे पास वो 2005 से और 2010 तक मैंने फोन लगाए हैं, वो डायरी में मेरे पास सब नोट कर लिखा हुआ है सर।
0: अच्छा बहुत बढ़िया है। आप बताएं कि एक पुराना भोपाल हुआ करता था, एक पूरा कल्चर भोपाल का 30-40 साल पहले जिस तरह का था, क्या वो आज खो गया है?
1: सर अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है, खैर पुराने भोपाल भी अब बहुत डेवलपमेंट हो गया है, नए भोपाल भी जो बन गया है, और ये कोलार इलाका भी पहले भोपाल में नहीं आता था, अभी 5 साल से आ रहा है।
0: नहीं लेकिन जो तहजीब थी भोपाल की, जो पुराने घर,
1: सर तहजीब तो सर भोपाल की वही रहेगी, क्योंकि जो बुजुर्गों सीखते हैं वो बच्चे करते हैं, अमल में लाते हैं।
0: बिल्कुल, एक पूरा शायरी का मिजाज और वो बात करने का अपना एक तरीका, भोपाल का पान।
1: जी सर, जी सर,
0: वो जलवे कायम है।
1: हाँ सर जलवे कायम है, वो पान की गुमटियाँ भी कायम है और नमक वाली चाय भी कायम है, और वो बिल्कुल

0: रौनक भी कायम है, मगर वो ज्यादातर पुराने भोपाल में पाई जाती है सर। वो
1: बिल्कुल, वो क्या कहते थे, तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया।
0: जी जी सर।
1: क्या बात है
0: सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
1: तो बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
0: फिल्म का नाम है मेरे हम सफर, और गाने के बोले किसी राह में किसी मोड़ पर यूँ चलना देना यूँ छोड़कर।
1: कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मुकेश की आवाज।
0: जी सर।
1: आपके लिए ये गाना कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मेरे हम सफर।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर, मैं गांव लिहे डिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश सोहन बात कर रहा हूँ।
0: जी जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, आप सभी से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, फोन कॉल नहीं लग रहा था, बहुत परेशान हो रहा था सर। अब जैसा शुरुआत हुआ था उसके बाद फोन ही नहीं लगा था मेरा।
0: बताइए, इतने दिनों बाद फोन लगाए, तो बताइए आपके इलाके की क्या हालचाल है भाई?
1: सर, इलाके की हालचाल तो बहुत गर्मी है और बहुत धूप है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, पर खेत में फसल को पानी भर रहा है, कपास को।
0: जी, कुछ जगहों पर बहुत बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं हो रही, क्या माजरा है ये?
1: हाँ सर, मैं भी सुन रहा हूँ कि मतलब जगह जगह रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ना, तो कुछ जगह बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो रही, उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही, महाराष्ट्र में बारिश क्यों नहीं हो रही सर?
0: हाँ, देखिए ना, मौसम किस तरह से बदल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना।
1: सही बात है सर, परेशान हो रहे हम लोग कि यहाँ पे खेत में सब मोटर से पानी चला रहे हैं और ऊपर से बारिश नहीं हो रही है।
0: जी जी, अच्छा मुझे ये बताइए कि विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सर, विविध भारती के कार्यक्रम मुझे सबसे ज्यादा हेलो फरमाइश और सखी सहेली, हेलो सहेली और जो पत्र आधारित के कार्यक्रम शुरू हुआ ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा हमारा फेवरेट प्रोग्राम है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा, सखी सहेली तो महिलाओं का कार्यक्रम है।

0: वो भी अच्छा लगता है सर सुनने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो गाने की फरमाइश।
0: गाने की फरमाइश सर, फिल्म का नाम है सरगम और गाने का बोल है पर्वत के उस पार।
1: चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर, यूनुस खान जी।
0: नमस्ते भैया,
1: मेरा नाम रामेश्वर रैकवार है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: अरे क्या बात है, छतरपुर से बोल रहे, क्या हालचाल भैया?
1: बढ़िया है सर, अभी एक्सीडेंट हो गया था, 2-3 माह पड़े रहे बिस्तर में।
0: क्या हो गया एक्सीडेंट, कैसे हो गया?
1: सर बस टकरा गई थी उससे, बस और उसका हो गया ट्रक का।
0: तो आप काय में थे, बस में कि ट्रक में?
1: बस में थे सर, डिपो में, यहाँ पे हमीरपुर में।
0: ए दद्दा रेसो, सब ठीक ठाक है, सलामती है?
1: सर सर फट गया था सर, अभी 2-3 महीने से हाथ फ्रैक्चर है, अभी बिस्तर में पड़े हैं सर।
0: ए दद्दा रे, तो बहुत ही बुरा हुआ। आजकल लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ ठीक से नहीं चला रहे मालक?
1: हाँ हाँ सर, ऐसा भी है,
0: है ना। हम सब लोगों से जे कहेंगे कि सड़क पे निकले तो थोड़ी अच्छे से गाड़ी चलाएं। और का
1: जी सर, आपसे दूसरी बार बात हो रही है मेरी।
0: दूसरी बार? हमें तो याद नहीं है
1: सर, अभी हुई थी ना, जब आप पूछ रहे थे आम यहाँ लग गई, आम में के नहीं लगी।
0: अरे हो अमिया अमिया, गर्मी के मौसम में बात हुई?
1: हाँ जी सर, हुई थी।
0: अच्छा जी, बताइए कि छतरपुर के क्या हालचाल, आधा बारिश हो गई?
1: हाँ हाँ सर।
0: अच्छा अच्छा
1: सर, वो खेत हमारे तालाब में है ना, इसलिए डूब जाते हैं, ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, मतलब ठीक ठाक हो गई।
0: अच्छा, तो का उगाते हैं अपन इन दिनों में खेत में, का चल रहा?
1: सर सोयाबीन, उड़दा और मूंग।
0: अच्छा, उड़दा भी उग जाती है?
1: जी सर।
0: अच्छा, जो हमारे श्रोता बुंदेली नहीं जाना तो उनको बता दें, उड़दा माने उड़द की दाल।
1: जी सर, उड़द।
0: हाँ, नहीं तो उड़दा लोग समझ ही नहीं पाए।

0: जी सर, आप तो सर आप तो बुंदेलखंडी जानते हैं अच्छे से।
1: नहीं, थोड़ी थोड़ी जाना थे भैया, हम सोई बुंदेलखंडी आए।
0: सर आप बताते रहते हैं ना, भोपाल में सागर में रहे हैं तो आप तो जानते ही होंगे।
1: हाँ, थोड़ी थोड़ी। हाँ, अपन बुंदेलखंडी आए थोड़े थोड़े।
0: जी सर।
1: सो आज कौन से गाने की फरमाइश आ रही ये बताओ।
0: सर हम वो वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: चलिए पूरी कर रहे आपकी फरमाइश, छतरपुर में आपके लाने बारे जे गाना।
2: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या

में माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना। सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, ग्राम बिछिया जिला विदिशा से कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ सर।
0: कैलाश जी कैसे हैं?
1: बस सर एकदम मस्त है सर। यूनुस जी आपकी आवाज तो हमारे दिलों में बसी है, बिल्कुल आपकी आवाज सुनते हैं तो समझ जाते हैं यूनुस जी आ गए हमारे।
0: अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुराने श्रोता हैं आप विविध भारती के।
1: बिल्कुल सर, आपने सही पहचाना, कम से कम 30 साल हो चुके हैं विविध भारती से जुड़े जुड़े।
0: इन 30 सालों में विविध भारती कितनी बदली है कैलाश जी?
1: प्रोग्राम तो सर एक सुबह का एक लाजवाब है सर विविध भारती के, और लगातार विविध भारती हम सुनते हैं, एकदम देश की सुरी धड़कन विविध भारती कहते हैं वो बिल्कुल सच है बात।
0: और देखिए 3 अक्टूबर को विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश करेगी, इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप?
1: बस सर इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बस सर, बस सभी लोग यूं ही विविध भारती

0: सुनते रहे, मनोरंजन तो है ही और साथ में ज्ञान भी मिलता है सर इससे, वेद भारती से बहुत अच्छा लगता है साथ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं कैलाशी
0: जी? सर आज सुनना चाहेंगे फिल्म मन का है नशा, ये प्यार का नशा है, क्योंकि वेद भारती का नशा जो है ना बहुत है हमको, और कई वर्षों से सुनते चले आ रहा है और अच्छा लगता है ये।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, सुनिए ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेड़ टांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: वसीम भाई कैसे हैं?
1: अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ईश्वर की कृपा है और आपकी दुआएं हैं सर।
0: आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर है ना, इससे बहुत सारी चीजें याद आ गई।
1: जी सर,
0: फिल्मों में पहले दिखाते थे रामपुरी।
1: जी, रामपुरी चाकू के नाम से जाना जाता सर ये। हाँ। और ये इंडस्ट्रियल एरिया है रामपुर।
0: अच्छा।
1: मतलब सर यहाँ पे धानों की खेती, गन्ना, गेहूँ होता है सर।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही पुराना इलाका है, वहाँ की तहजीब बहुत अलग है।
1: जी सर, सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एमए कर रखा पॉलिटिकल साइंस से।
0: अच्छा।
1: और जब जब समय मिलता है सर आपके प्रोग्राम सुनते हैं। विविध भारती से सर बहुत पुराना नाता है और एक लंबे अंतराल के बाद आपसे हेलो फरमाइश में बात हो रही है, तो अपनी खुशी सर मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता कि इतनी खुशी हो रही है सर मुझे।
0: आपकी आवाज में आपकी खुशी छलक रही है।
1: जी सर, और आपकी आवाज सुन लेते हैं तो सर आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम अच्छे से पेश करते हैं सर, बहुत खुशी होती है सर आपकी आवाज सुन के सर, बस कुछ बयां नहीं कर सकते कि इतनी खुशी महसूस हो रही है सर आज।
0: शुक्रिया।

0: भाई बताएं किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: सर मूवी का नाम है अंदाज और उसमें एक सॉन्ग है किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, इसके बोले
0: जी बिल्कुल।
1: और जी सर आपके लिए दो लाइन है
0: इरशाद
1: कि काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं सर आपकी जिंदगी के लिए।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब आपको सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का ये गाना रामपुर में।

0: हेलो फरमाइश।
1: बहुत दिनों से बात करने चाह रहा हूँ तो आपसे आज बात हो रही है सर।
0: जी नाम क्या है आपका?
1: मैं इस्माइल पात्रूर शरीफ तालुका मजलेगांव जिला बीड़ से बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ सर, आपकी दुआ से, अल्लाह के फजल से।
0: और बताएं विविध भारती की कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लग रहे सर, सब गाने सुनता हूँ सर मैं आपके कार्यक्रम के।
0: जी जी बहुत बहुत
1: सर। और शेर कहना चाहता हूँ सर मैं।
0: इरशाद।
1: फूलों में हंसी गुलाब है, फूलों में हंसी गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। अगर हमसे कोई पूछे विविध भारती के बारे में तो हम कहेंगे वो बहुत बहुत लाजवाब है।
0: वाह वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कातिलों में कातिल सर।
0: अरे बाप रे, कातिलों का कातिल कौन सा गाना?
1: ये अल्लाह को खबर, ये मौला को खबर, बहुत अच्छा गाना है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खेटांडे से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ सर।
0: जी बताइए कैसे हैं आप?
1: सर एकदम अच्छे हैं, आप बताइए सर आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। विविध भारती का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए कौन सा है आपकी नज़र में?
1: सर मेरी नज़र में सबसे अच्छा प्रोग्राम तो देखिए सर फोन इन प्रोग्राम है ये।
0: अच्छा,
1: इसके अलावा जो आप मैसेज के आधार पर जो सॉन्ग सुनवाते हैं वो, और रात में जो भूले बिस्तर गीत, और ये पिटारा के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं सर,
0: हाँ जी,
1: ये सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सर।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह की बात आपने कही, विविध भारती 3 अक्टूबर को अपनी सालगिरह मना रहा है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: सर देखिए विविध भारती हमारे दिलों पर राज करता चला आ रहा है इस जमाने से
0: जी,
1: और सर यही ऐसी जो प्रोग्राम चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहें, और हम इससे जुड़े रहें, हम सुनते रहें, आप हमारा मनोरंजन करते रहें सर, इससे ज्यादा बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं।
0: आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, और गाने के बोले कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
0: वाह भाई वाह,
1: तरह के गाने के बोले सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही गाने के बोल बताए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी हो रही है आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग होती है सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867088 यानी 02228670288, दूसरा नंबर है 0224002466 यानी 40024662। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से। और अब ये इल्तिजा कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे ये निवेदन है कि अगले 2 महीने तक हमें फोन न करें ताकि हमारे नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, कभी कभी किसी के चले जाने से सिर्फ एक रिश्ता खत्म नहीं होता, हमारे भीतर बसा हुआ एक पूरा संसार जैसे अचानक खामोश हो जाता है, जिसे अपना समझकर जीवन की सबसे खूबसूरत उम्मीदें सौंप दी थी, वही जब बिना पीछे देखे चला जाए तो सवाल सिर्फ उसके जाने का नहीं रहता, सवाल ये होता है कि उसके साथ हम अपने भीतर का कितना कुछ खो आए हैं।

यादें इतनी आसानी से कहां जाती हैं? कभी उसकी कही हुई कोई बात अचानक कानों में पड़ती है, कभी किसी रास्ते से गुजरते हुए पुराने दिनों की आहट मिलती है। दिल एक पल को सोचता है, शायद वह लौट आए, शायद बीती हुई बातों का कोई अर्थ अब भी बाकी हो, शायद इसी कारण आज भी उसकी आंखें किसी लौटते हुए कदम की आहट नहीं बल्कि उस बीते हुए प्रेम की कोई आखिरी

रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है तब यादें जागती हैं, वह भी जागती है और अपने बीते हुए प्रेम के साथ थोड़ी देर बैठती है। हाँ, कहते हैं रिश्ते कभी कभी खत्म हो जाते हैं, मगर उनसे निकली हुई धुन बहुत देर तक हमारे भीतर बजती।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इतने वर्षों बाद भी मेरे भीतर तुम्हारे लिए कुछ बचा हुआ है। हाँ, कुछ बचा हुआ है। मैं उसे प्रेम कहूँ, कमजोरी, आदत या कुछ और, मैं आज भी इसका उत्तर नहीं जानती। हाँ, ये सच है, शायद कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, वे बस हमारे साथ उम्र भर चलते रहते हैं, चलते रहते।

कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते, वे बस अपनी आवाज खो देते हैं। दो लोग अलग हो जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, मगर किसी एक के भीतर वो कहानी वहीं ठहर जाती है, उसी मोड़ पर, किसी किताब के खुले पन्ने में, किसी पुराने गीत में, हाँ खिड़की से आती उस हवा में भी। तो यकीनन उसने उसे खो दिया है, लेकिन अपने भीतर उस प्रेम को खोना नहीं चाहती वो। हाँ उस प्रेम को कभी खोना नहीं चाहती वो।

अब जो बचा है वो है एक लंबी खामोशी। विरह धीरे धीरे आंसुओं से निकलकर एक मौन स्वीकृति बन गया है। अब किरदार, या यूं कहूं मुख्य किरदार चला गया है मेरी प्रेम कहानी का, और कहानी दिल में वहीं ठहर गई है। शायद प्रेम में सबसे गहरी प्रतीक्षा वही होती है जिसमें इंसान जानता है कि वो नहीं आएगा, फिर भी दरवाजा बंद नहीं करता। हाँ, फिर भी दरवाजा बंद नहीं।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
1: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं विमलेश मैडम जी और अजीत साहिब जी, जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मित व्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
1: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी,
1: तो विमलेश जी शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
1: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
1: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
2: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
1: जी हाँ श्रोताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है।
2: जी,
1: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
2: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
1: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
2: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
1: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
2: जी,
1: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
2: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
1: जी हाँ, तो विमलेश जी जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
2: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं,
1: जैसे मोटे दीवारों वाले घर,
2: जी,
1: छायादार आंगन, हवादार कमरे,
2: जी,
1: और खिड़कियों पर पर्दे।
2: वे
1: कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए।
2: जी,
1: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
2: श्रोताओ, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो वहाँ

0: पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
1: जी हाँ श्रोताओ, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
0: जी,
1: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
0: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें?
1: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
0: जी,
1: वैसे विमलेश जी क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
0: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
0: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
1: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता।
0: जी,
1: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
0: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए।
1: जी,
0: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
1: जी हाँ श्रोताओं, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
0: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
1: क्या सीख विमलेश जी?
0: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता।
1: जी,
0: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं। कभी गर्मी आएगी, तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
1: तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर, या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
1: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
3: मेरे पुत्रों।
4: जी पिताजी।
3: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
4: पिताजी,
3: क्या पता कब लोग सिधार जाऊं।
4: पिताजी, ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
3: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
5: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? ना खेत हैं और ना कोई दूसरा काम।
4: जी
3: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
4: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
3: बेटा धीरेंद्र, देखो, धन दौलत जैसी चीजें स्थाई नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं।
4: जी।
3: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
4: जी पिताजी।
3: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
4: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
2: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया।

0: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
1: हाँ तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
2: भला वो क्या?
0: चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
1: हाँ ये ठीक रहेगा भैया।
3: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
0: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
4: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है, क्यों भाई धीरेन्द्र?
2: जी भैया आप ठीक कह रहे हैं।
0: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
3: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
0: महाशय क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
2: हाँ
4: आपका ऊंट खो गया है ना?
2: हाँ मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आँख से देख नहीं पाता है ना?
5: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
0: महाशय हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
5: है?
0: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
5: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
2: नहीं नहीं,
5: अरे
2: नहीं,
5: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
2: अरे महाशय हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
5: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
2: नहीं
5: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
2: वो
5: देखो मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
2: लेकिन
5: अरे, अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
2: क्या
5: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
3: भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
5: मुझे कुछ नहीं सुनना।
6: लेकिन महाशय हमारी बात सुन ले महाशय।
5: मगर ये निकाली मैंने अपनी तलवार, अब चलो मेरे आगे आगे चलो चलो चलो।
3: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
5: अब तुम सब राजा के पास चलो।
7: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
0: राजन हम चोर नहीं है, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
8: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
7: महाराज यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
8: तुम लोगों को कुछ कहना है?
2: राजन हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
8: अच्छा तो ये बात है
2: जी।
8: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
9: जी महाराज।
3: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
8: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
0: महाराज इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
6: और महाराज वो अनार कच्चा है।

0: जब पेटी खोली गई, तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
1: खाइए खाइए, लीजिए।
2: जी महाराज, धन्यवाद।
0: फिर पूछा,
3: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
1: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
4: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहां अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
5: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया, तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
3: वाह, बहुत खूब।
0: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
3: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
4: महाराज, वहाँ पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
3: क्या बात है?
1: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
3: अच्छा,
1: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
3: जी बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
5: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी।
3: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
2: धन्यवाद महाराज।
1: महाराज, शुक्रिया महाराज।
3: मैं सचमुच चकित हूँ।
1: जी महाराज।
0: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।

0: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
1: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
0: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गईं।
1: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
0: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हां, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था।

0: पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते, सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
1: सरला, सरला बेटी, सरला बेटी।
2: अरे

0: भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
1: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो फिर देर किस बात की, लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
1: अच्छा,
0: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
1: पर
0: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
1: लेकिन बाबूजी मैं धन्यवाद बाबूजी।
0: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस।
2: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
3: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
4: धन्यवाद सर।
3: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
5: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
3: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
6: सर, मैं बताऊँ सर?
3: हाँ, कहो।
6: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
3: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
6: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
3: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
1: हाँ, जी सही बात।
3: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए।
1: सर, मैं बताऊँ?
3: हाँ, सरला तुम बताओ।
1: सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
3: बहुत अच्छे सरला।
1: धन्यवाद सर।
3: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर।
2: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
7: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
2: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
8: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
1: I'm so excited.
8: पहली महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आंखों से।

0: लैंडिंग
1: कमाल,
2: थैंक यू,
3: बहुत अच्छा लगा,
2: थैंक यू, धन्यवाद,
3: आप कितने अच्छे तरीके से चले
4: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
5: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थीं।
4: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
5: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
4: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
5: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
4: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
6: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को यह डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
4: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
7: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
9: শ্রোতাবন্ধু শুণুলে প্রায়োজিত কার্যক্রম এনসিআরটি আকাশবাণী বারিপদা আরম্ভ করছু কার্যক্রম ভক্তি গীত। কার্যক্রমর প্রথম শিল্পী কুমার বাপি, গীত রচনা ডক্টর নির্মল নায়ক।

0: ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ଆକାଶବାଣୀ, ଏଇ ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର କାହାଣୀ।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: एही कार्यक्रमर प्रायोजक हेउछन्ती कृषि ओ कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: ए पिलाटार कोन देखा दर्शन अछि? हौ केते बेले आस्तु आसु, जेते बेले कहिबु टिके बेगी आसिबु सेते बेले तार डेरी। हौ कोनो काम तार पड़ी गेला के जानी, ए पर्यंत तार देखा दर्शन नाइ, एही बसी थाए गपु थाए, निजे निजे गपिकी पळैबे आ कोन करिबे। एमानक द्वारा किछि हबनी,
6: आमरी सहित सब किछि हब।
7: निधिया किरे
6: जुहारे जुहारे अपा।
7: हां जुहारे जुहारे, एते देरी काई हेला कि?
6: ये बैठै घर आसीबा पूर्वरु आम युवक संघर गोटे सभा थिला, आ सेई काम सारिकि पर आसुचि।
7: कोन कथा हेलो टिके कहुनो?
6: कथा होचि अपा, ये आमर जो गा मुंडरे पोखरीटे अछि, आ बहुत दिन हब सेइथरे दळ रहिछि, ये ताको पुणी सफा सफीर व्यवस्था किछि करिबा ना एमति दळ हेकि पडथिबो?
7: ना ना, आमे इतले गा भुइरे घर करिछन्ति, गा सफा पोखरी सफा सब आमे माने करिबा। आ से दिने तुमे कहिलो आमे युवक संघ पिला से पोखरी सफा करि दबो, केते बाट गलानि से काम?
6: नाइ नाइ, से काम हब सेइथि पई परा सभाटी होउथिला। ये कथा होचि आमर जेत्ते परिष्कार परिछन्न गा रहिबो सेते आमे रोग दाउरु रक्षा पाइबा, आउ ता सहित आमे ओटे भल सुस्थ जीवन यापन करि पारिबो।
7: स्वच्छता ही सुस्थ जीवनर चाबी काठिबरा,
6: ता सहित स्वच्छता ही सेवा।
7: सेवा मनोवृत्ति नै गा सफेई काम हौ कि घर सफेई हौ, सेवा मनोवृत्ति नै कि काम करूथुबो।
6: आउ गोटिए कथा होचि अपा, स्वच्छताटा सबुबेले आम घरु आरंभ हबा दरकार।
7: एई घर कथा कहिलारु मोर मने पडिला, बहुको परा कहिछि ए बाडी पटो आडो दांद पटो आमे जो गछ गुछ सब लगैथिलु ता मुडरे आडु साडु गछ उठिथिला, ताकु से परिष्कार करिछि, ता सहित घर चारिपा गुहाळ घर सबु परिष्कार हेला। काहे कि कहुन हेई पूजा पार्वणर समय, जदि गाँ परिष्कार रहिला घर परिष्कार रहिला भल लागिब, देह पा भी भल रहिब।
6: सेइति पई कहुछि नाळ नर्दमा जोठि अछि, आमर जोठ सब मिसिकि कुओ अछि, पोखरी अछि, आमर पानी जल जोठ आमे पाउछि, सेही सबु को आमे सफा सुथरा रखुथिबा, तार चारिपाख परिष्कार परिच्छन्न रखिबा। आउ जदि आमको किछि दरकार होउछि ताहाले आमे परामर्श अन्यमानठु नबा, आउ ताकु केमिति सफा सुथरा करि रखिले आमको आगुको बढ़ी पारिबा।
7: जा हौ तुमे युवक माने एतिकि काम हातकु नेइछ, चारियाड सफा सुथरा रखुछ, गाँ सफा करुछ, पोखरीरु दळ काढुछ, जो गाँ टिके अपरिष्कार हेइथिला अदरकारी एणु तेणु गछ सब उठिथिला ताकु सब उपाडी देइछ, गाँ त पूरा परिष्कार करि देइछ, आउ गाँ त पूरा बढ़िया लागुछ देखिया पई।
6: आहुरी बढ़िया लागिबो, ये काम जेते आगुको बढ़ी चालिबो सेते परिष्कार परिच्छन्न लागिबो, आउ समस्ते भल रहिबे। ये देखुन अपा, जदि आमे परिष्कार परिच्छन्न करुचे ताहले आमे मसा माछी दाउरु भी रक्षा पाई परिबा ना नै?
7: ए वर्षा समय हेई होउथला अधिक अधिक, एबे टिके कमीचे, केते बेले पुनी दूर दूर करी गाली दउचे, जदि परिष्कार रहिथिबा दूर दूर गालु मसा काहिं के हेबे मो?
6: आउ गोटे कथा हला, आमे समस्ते मन रखिबा जे परिष्कार परिच्छन्न तो करुचे किंतु अपरिष्कार मध्ये करिबा नाही।
7: ए पिला माने कोन करुचंदी कहिलो? ए जो पानी नळम ताकु खोली देउचंदी, ए तांका बापा मांको कहिकि आसि पिलांगु पानी पई पठैबनी।
6: ता सहित आमर अळिया आवर्जना जो जथा स्थान रे पकेबा कथा पकेबा, आउ डस्टबिन न व्यवहार करिबा, सामूहिक भाबरे जदि अळिया अपरिष्कार होउचि ताकु समस्ते मिलेमिसि परिष्कार परिच्छन्न करिबा, तेबे जाय आमे रोगदारु रक्षा पाइ परिबा।
7: ता सहित गोबर जो बाहरुचि गुहाळ घरु ताकु नै आमे जो खात करिचंदी सेथिरे पकेबा, एई टिके शीत हेइ गले गुंडा घसि तोडा हबो, केते भलो हबो। आउ गुहाळ घर जो आमे धोइ दउचंती ता पानी केमिति टिके दूर बाटरे रहिबो, काई ना जमी की रहिले मसा माछी हेबे आम मानको असुविधा। चारियाड केमिति परिष्कार परिच्छन्न रखिबा आम मानकर दायित्व।
6: हां सेई दायित्व को जदि बुझुतिबा ताले परिवेश परिष्कार परिच्छन्न रहुतिबो, आ आम मन त खुशी लागुतिबो,
7: मन खुशी।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: କି ଆଉ ନୁହଁ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना रे घर छातरे सोलार पैनल बसांतु एवं मासिक 300 यूनिट पर्यंत संचय करंतु। इ योजना रे केंद्र और राज्य सरकारक तरफ रु 1,38,000 टंका पर्यंत सब्सिडी सुविधा मध्ये रहिछि। सबु जेबी संचय भी आज ही निकटस्थ टीपीएनओडीएल कार्यालय किंबा 1800-345-6718 रे जोगाजोग करंतु। आपनक पई आपनक सहित सर्वदा टीपीएनओडीएल।
1: हाँ भाई क्या चल हो
2: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो।
1: ओहो माने कथा फिटे कह
2: माने सिनी और उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलई मशीन टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समर्सिबल मोनोब्लॉक आउ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा जंत्र पेट्रोल डीजेल किरोसिनी पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेट सबु रकम सुविधा मिलुची।
1: केठे मिलुची हो एते सुविधा
2: जानिन बारिपदार अति परिचित दुकान पोरा
3: ठिकना होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनी कुणिया छक बारिपदा
1: ताला जीबा ना की कहू
2: चलो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीए

0: एससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
4: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
0: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
5: We are very, very proud of the bravery and the courage.
6: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को

0: गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
1: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड।
2: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वा

0: शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
1: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गयी, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छर की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
3: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहाँ 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
4: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यह उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
5: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
3: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम

0: विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, pro-active and good governance, stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast-tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. US sanctions 10 individuals and entities, including Pakistani businessmen, over Iran military procurement. And in Asian Games in Japan, India bags 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. Indian men's hockey and cricket teams enter final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, pro-active and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
2: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं, पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: The Prime Minister said an examination should not be considered just an event as it is related to the future of the youth. Mr. Modi noted that a delay of even a few months can create difficulties for the youth and therefore the examination system should follow the principle of time certainty. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have praised Captain Smith Machar for his heroic courage in preventing a major tragedy and saving many precious lives. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump have also hailed Smith Machar

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

आइए सुने अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है आज और कल।

0: ये फिजाएं बुला रहे हैं तुम्हें।
1: साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ठेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के एल

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: ये आकाशवाणी है प्रादेशिक लोक संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है बांग्ला संगीत के अंतर्गत नजरुल गीति
1: लाइची नगर ठरे चली थी बा एशियन गेम्स 2026 रो डेली हाइलाइट्स रिले करी प्रचार करू छु आकाशवाणी दिल्ली रो
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया
3: बीसवें एशियाई खेलों में आज के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं हम मैं हूं अनुपम पाठक नमस्कार सबसे पहले आज की सुर्खियां नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन कुश्ती में इतिहास रचा पाया रजत पदक सेलिंग में फ्रांसिस मनु और प्रिंस नोबेल ने रजत पदक हासिल किया कंपाउंड आर्चरी में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक पर निशाना साधा स्क्वैश में महिला और पुरुष टीम दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक और हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया पहलवानी के मैच पर आज भारतीय लिहाज से एक अनोखी उपलब्धि आई सोनीपत हरियाणा के लाल ने कमाल कर दिया 1962 के बाद पहली बार कोई भारतीय ग्रीको रोमन स्पर्धा के इवेंट में फाइनल में पहुंचा खुलासा शाहिद आजमी से
4: भारतीय पहलवान नितेश कुमार ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीतकर 64 साल का इंतजार खत्म कर दिया शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक पहुंचे नितेश भले ही स्वर्ण पदक से चूक गए लेकिन उनका रजत पदक भारत की कुश्ती के इतिहास में एक नया अध्याय गया पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमान बर्दी अगामेदेव को 7-1 से हराया जबकि सेमीफाइनल में मंगोलिया के गंगहुयाग गनबातार को 9-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई फाइनल में उन्हें जापान के यूरी नकाजातो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा लेकिन रजत पदक जीतकर नितेश ने इतिहास रच दिया वह 1962 के बाद ग्रीको रोमन वर्ग में एशियन गेम्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हालांकि इससे पूर्व दो और ग्रीको रोमन मैच खेले गए लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली 60 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित को ईरान के अब्बासपुर रागानी के खिलाफ मुकाबला गंवाना पड़ा वहीं 77 किलोग्राम में अमन ने शानदार शुरुआत करते हुए मंगोलिया के बोरगिल तोशिन बातार को 8-6 से हराया हालांकि अगले मुकाबले में कतर के शाहीन बदाघी मुफराद ने अमन को 9-0 से शिकस्त दी इसके साथ ही भारत का ग्रीको रोमन कुश्ती अभियान दो पदकों के साथ समाप्त हो गया वहीं महिला वर्ग में आज एकमात्र वजन वर्ग में भारतीय पहलवान मानसी अहलावत 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई मानसी का कांस्य पदक मुकाबले में मंगोलिया के अल्तजिन तोक्तोक से सामना हुआ रोमांच से भरपूर इस मैच में मानसी ने आखिरी दम तक जोर लगाया लेकिन 4-2 से हारकर कांस्य पदक से चूक गई इससे पहले मानसी ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की इरिना कुज़नेत्सोवा को 6-1 से हराया जबकि क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जो सुबिन को विक्ट्री बाई फॉल से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई हालांकि सेमीफाइनल में जापान की नोनोका ओजाकी के खिलाफ मानसी को 0-6 से हार सामना करना पड़ा अब कल 2 अक्टूबर को पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल और 125 किलोग्राम में रुहाल चुनौती पेश करेंगे वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम में दीपांशी और 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक मैट पर उतरेंगी
3: नौकायन के नाविक कई दिनों से समंदर की लहरें गिन रहे थे आज कई स्पर्धाओं में उनकी नाव किनारे पर जा लगी स्किप में प्रिंस नोबेल और फ्रांसिस मनु की

0: तो चांदी से भर गई और इस चांदी की पूरी कहानी साक्षी मंडवाल से।
1: इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मानु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसिंकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेंस गिफ्ट इवेंट। द इंडियन पेयर फिनिश्ड सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 नेट पॉइंट्स। इंडिया रिकॉर्डेड 2 रेस विन्स एंड 2 सेकंड प्लेस फिनिशेस इन द 9 रेस सीरीज। चाइना क्लेम्ड द गोल्ड व्हाइल हांगकांग टुक द ब्रॉन्ज मेडल।
0: कंपाउंड आर्चरी में युवा होनहार गणेश रत्नम और चिकिता तानिपार्थी थे आर्चरी रेंज में। पदक एक ही आया। रिपोर्ट शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स के 12वें दिन तीरंदाजी में भारत के लिए एक पदक आया तो एक मुकाबले में करीबी हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में गणेश ने वियतनाम के ओंग डुक डांग को 149 के मुकाबले 144 अंकों से हराया। गणेश ने मुकाबले में गजब की सटीकता दिखाई और 15 में से 14 तीरों पर परफेक्ट 10 का स्कोर किया। ये एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है। इससे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम का हिस्सा रहे थे। उनके कांस्य पदक के साथ कंपाउंड तीरंदाजी में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य समेत 4 पदक जीते। वहीं महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चिकिता तानिपार्थी को इंडोनेशिया की नूरिसा दियान अशफरिहान ने बेहद करीबी मुकाबले में 144 से 143 हराया। इसके साथ ही चिकिता का व्यक्तिगत कंपाउंड अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया।
0: स्क्वाश में टीम स्पर्धाओं में भारतीय टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई सेमीफाइनल तक पहुंच गईं और आज सेमीफाइनल में दोनों टीमों के रैकेट विपक्षी कौशल और दमखम को पार नहीं कर सके, लेकिन उनके हौसले और अभियान की दाद दीजिए जिसने दोनों को दिलाए कांस्य पदक। रिपोर्ट धर्मेंद्र से।
3: स्क्वाश में भारत को आज 2 कांस्य पदक मिले। पुरुष टीम को मलेशिया के हाथों सेमीफाइनल में 1-2 की हार से ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। पहले मैच में अभय सिंह को एनजी ईयान ने 0-3 से शिकस्त दी। स्कोर 8-11 रहा, लेकिन दूसरे मैच में वीर चोटरानी ने भारत को वापसी कराई। इस मैच को चोटरानी ने 3-0 से अपने नाम किया। उन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी संजय जीवा को 11-4 11-8 11-5 के स्कोर से शिकस्त दी, लेकिन वी सेंथिल कुमार निर्णायक मैच में पराजित हो गए। उन्हें ए चंद्रन ने 4 सेट में 12-10 6-11 8-11 9-11 से हराया और भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। भारतीय महिला स्क्वाश टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत भारतीय महिला स्क्वाश टीम के लिए अच्छी नहीं रही। ये अलग बात है कि अनाहत सिंह ने चांद सिंह युग के खिलाफ अच्छी शुरुआत की और पहले 2 गेम जीते। अनाहत ने पहला गेम 11-9 और दूसरा गेम 11-8 से अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद चांद सिंह ने शानदार वापसी की और उन्होंने अगले 3 गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। तीसरा गेम चांद सिंह ने 11-6 से जीता तो चौथे गेम को 13-11 और पांचवें गेम को 12-10 से जीता। इस जीत के साथ हांगकांग ने मैच में 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि इसके बाद तन्वी खन्ना ने भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। उन्होंने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी ली का यी को बेहतरीन वापसी करते हुए हराया। पहले गेम में तन्वी को 4-11 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अगले 3 गेम जीतकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। तन्वी ने दूसरा गेम 13-11 तीसरा गेम 11-9 और फिर 13-11 से जीता। निर्णायक मुकाबले में ज्योत्सना चिनप्पा ने निराश किया और वह होजे लोक के खिलाफ हार गई। होजे ने पहला गेम 11-4 से अपना नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में भी हांगकांग की खिलाड़ी का दबदबा रहा और उन्होंने गेम को 11-7 से जीता। होजे तीसरे गेम में भी हावी नजर आई और उन्होंने 11-9 से जीत कर हांगकांग को फाइनल का टिकट दिलाया।
0: हॉकी में परंपरागत विपक्षी भारत और पाकिस्तान थे आमने सामने और क्या मैच हुआ, लोभहर्षक सांसें थाम देने वाला। भारत ने करीब 1 दशक से पाकिस्तान पर चली आ रही अपनी बादशाहत बनाए रखी, मैच 4-3 से जीत लिया। किसी बेहतरीन थ्रिलर की तरह था ये मैच। 3-3 की बराबरी, खेल समाप्त होने वाला था, सीटी बजने वाली थी। लग रहा था मामला शूट आउट में जा रहा है तो हूटर बजने के ठीक 40 सेकंड पहले भारतीय हमला होता है। गेंद डी में पहुंचती है, पाकिस्तानी डिफेंडर के स्टिक से टकराकर होती है और अभिषेक ने फुर्ती के साथ गेंद को गोल मुहाने के भीतर कर दिया। भारत फाइनल में पहुंच गया, लेकिन इस मैच के रंग कई बार बदले थे। पहले दोनों क्वार्टर्स भारत के नाम और अगले दोनों में भारतीय रक्षण की चूक और पाकिस्तान के पलटवार। पहले क्वार्टर में ही 5वें मिनट और फिर 13वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर हिट्स का जादू चलाया। भारत 2-0 से आगे। हाफ टाइम के बाद सुखबीर ने एक बेहतरीन फील्ड गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया। भला किसने सोचा था कि पाकिस्तान अभी भी मैच में वापस आ सकता है, लेकिन लगा भारतीय रक्षण की धार अचानक कुंद सी हो गई है। पहले पेनल्टी कॉर्नर में

0: महमूद और फिर हनान शाहिद का फील्ड गोल और उसके बाद चौथे क्वार्टर में राणा वहीद का भी लेफ्ट फ्लैंक से मारा गया करारा शॉट जिससे गोलकीपर कोसों दूर थे। बहरहाल अभिषेक के गोल ने भारत की जीत पक्की कर दी। अब स्वर्ण पदक के लिए भारत मलेशिया से भिड़ेगा 3 तारीख को और कहने की जरूरत नहीं हॉकी का स्वर्ण पदक और सभी पदकों से ज्यादा प्यारा होता है हमें। क्रिकेट में आखिरकार भारतीय टीम सचमुच मैदान में उतरी और शानदार मैच खेला। इस शानदार जीत की शानदार कहानी धर्मेंद्र से।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने जापान के निशिन में खेले गए सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट भारत के लिए लिए। भारत ने श्रीलंका पर 2020 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। पिछली सबसे बड़ी जीत 93 रन की थी जो 2017 में कटक में मिली थी। अब शनिवार को गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये पहला मौका है जब ये दोनों टीमें एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले में आमने सामने होंगी। ईशान ने बताया कि भारतीय टीम फाइनल मैच के लिए तैयार है। ईशान किशन ने इस मैच के बारे में कहा,
2: आई थिंक जस्ट कीपिंग इट सिंपल, यू नो यू डोंट थिंक सो मच। वी प्लेड टुडे, वी नो द कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी सो इजी, स्पेशली दे आर आल्सो स्पिनिंग स्पिनर फ्रेंडली टीम। एट द सेम टाइम यू नो यू जस्ट डोंट थिंक लाइक व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर 2 डेज, यू जस्ट कीप काम, यू प्ले योर शॉट्स, यू बी इन द मोमेंट एंड जस्ट एंजॉय दोस क्रंच मोमेंट्स।
0: सिपक टॉकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में अरुण और बॉबी कुमार के खेल ने उम्मीदें जगाई रखी। जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: India secured a medal in men's quadrant Sepak Takraw after beating Myanmar 2-1 in their final group match. The victory sent India into the semi-finals and keeps their unbeaten run intact across 3 group matches. India finished top of their group and are assured of a place on the podium. Earlier in the day, we saw India defeat Vietnam in the men's quadrant Group A match of the Sepak Takraw event. They won in straight sets by a margin of 15-12, 15-7, thereby defeating Vietnam 2-0.
0: शूटिंग की स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई। अंतिम स्पर्धा भी कल से जारी पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश भानवाला फाइनल तक तो पहुंचे लेकिन पदक पे निशाना नहीं साध पाए। आज की स्पर्धा पर शाहिद आजमी का विवरण।
4: एशियन गेम 2026 में शूटिंग स्पर्धा में आज भारत की आखिरी उम्मीद अनीश भानवाला का सफर 25 मीटर रैपिड पिस्टल के फाइनल में 7वें स्थान पर रहते हुए खत्म हुआ। क्वालिफिकेशन में अनीश ने 576 का स्कोर कर 9वां स्थान हासिल किया। हालांकि एक देश से अधिकतम 2 निशानेबाजों को फाइनल में पहुंचने के नियम के तहत उन्हें फाइनल में जगह मिली। आपको बता दें दक्षिण कोरिया के 3 निशानेबाज क्वालिफाई हुए थे लेकिन नियम के तहत उनके 2 निशानेबाज ही फाइनल में पहुंच सके। फाइनल में अनीश ने एक अहम दौर में 15 में से 11 सटीक निशाने लगाए लेकिन टाई ब्रेकर में पीछे रह गए। इस तरह अनीश 7वें स्थान पर रहे और उनके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान समाप्त हो गया। अब एक नजर डालते हैं एशियन गेम 2026 में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर। भारतीय शूटरों ने एक बार फिर अपनी सटीक निशानेबाजी का दम दिखाया। हालांकि कुछ नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ओवरऑल भारत ने कुल 15 पदक अपने नाम किए जिनमें 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही नीरू ढांडा का प्रदर्शन। उन्होंने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने के साथ ही कायनन चेनई के साथ मिक्स ट्रैप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और अगर पिछले एशियन गेम्स की तुलना करें तो हांगझाऊ 2022 एशियन गेम्स जो 2023 चीन में आयोजित हुए थे वहाँ भारतीय निशानेबाजों ने 22 पदक जीते थे जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।
0: वॉलीबॉल में टीम दमखम तो पूरा लगाती है लेकिन 1986 के बाद से पदक नहीं आ पा रहा। लेकिन आज क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को वो ब्लॉक नहीं कर पाए। विवरण धर्मेंद्र से।
1: वॉलीबॉल में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से 0-3 से हार गई। पाकिस्तान ने मुकाबला 25-19, 25-23, 25-18 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ये मैच 1 घंटे 20 मिनट तक चला। भारत को सबसे ज्यादा 10 अंक अंशवाल राय ने दिलाए। पाकिस्तान के मुराद खान ने 22 अंक बनाए। इस हार के साथ भारत का एशियन गेम्स में वॉलीबॉल अभियान खत्म हो गया।
0: जूडो में उम्मीदें यामिनी मौर्य से थी लेकिन मन मोह लिया मणिपुर की एक लड़की ने। कांस्य पदक के बिल्कुल नजदीक पहुंच

0: जूडो का विवरण साक्षी मंडवाल से।
1: इन जूडो यामिनी मौर्या's कैंपेन एंडेड विद अ डिफीट इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम रेपेचार्ज एट द एशियन गेम्स व्हाइल इंडियाज इनन गनबी तकलम्बा फर्स्ट बीट नेपाल्स पूनम श्रेष्ठा बाय इपो टू क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स हाउएवर शी लॉस्ट बाय इपो टू नॉर्थ कोरिया's सोंग हुई मून इन द क्वार्टर फाइनल्स सोंग्स रीचिंग द फाइनल ओपनड अप द रेपेचार्ज राउट फॉर तकलम्बा The Indian was scheduled to face China's Jing Tang in the repechage round. However, the Chinese judoka was disqualified before the bout. Consequently, Taklambaam was awarded a walkover victory via Fusen Gachi. India's Inan Gambi Taklambaam lost the bronze medal bout in the women's 70kg event, getting defeated by Anujin Ulzi, who won the bout by Waza Ari.
0: इन एशियाई खेलों में टेनिस ने जरूर कई दिल तोड़ दिए मायूस किया 40 साल बाद टेनिस में भारतीय दल बिना पदक के रह गया सुमित नांगल भी अपना मैच आज हार बैठे क्वार्टर फाइनल का लेकिन गोल्फ की बात करें तो उसमें उम्मीदें जगी हुई हैं कल आरंभ हुआ था भारतीय टीम चुनौती देने की स्थिति में लग रही थी और आज क्या हुआ इसका विवरण दे रही हैं साक्षी मंडवाल
1: इंडियाज प्रणवी उर्स वाज इन द सेकंड प्लेस इन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले आफ्टर टू राउंड्स कार्डिंग 11 अंडर 129 टू सेट टू स्ट्रोक्स बिहाइंड लीडर शैनन जुआन जिन टैन ऑफ सिंगापुर Diksha Dagar was tied 21st at 4 over 144, while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are third in the team standings behind China and Singapore.
0: साइकिलिंग ट्रैक में आज पुरुष ओमनियम महिला स्प्रिंट और मेडिसिन की प्रतियोगिताएं थीं। ओमनियम में हर्षवीर सिंह सैखों नवे स्थान पर पहुंचे महिलाएं मेडिसिन स्पर्धा समाप्त ही नहीं कर सकी और स्प्रिंट में साइकिलों के चक्के रिपेचेस तक पहुंचकर ही थम गए तो ताइक्वांडो में क्या हुआ आइए जानते हैं साक्षी मंडवाल से एक बार फिर
1: इंडियाज कैंपेन इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पॉम्से इवेंट इन ताइक्वांडो एंडेड एज रूपा बेयोर बाउड आउट ऑफ द सेमीफाइनल शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल
0: रग्बी सेवन के मुकाबलों में भारत पूल ई में है हांगकांग से पहला मैच ही बहुत मुश्किल साबित हुआ भारत के लिए इस स्पर्धा का पूरा विवरण साक्षी मंडवाल से
1: इंडियाज वुमेन्स रग्बी सेवन्स टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव दुमुनी मारंदी संध्या राय मामा नाय वैष्णवी पाटिल कल्याणी पाटिल अमनदीप कौर आरती कुमारी भूमिका शुक्ला गुरिया कुमारी निर्मल्या राउत संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगे हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द आईची नगोया 26 Asian Games, suffering two heavy defeats in Pool B, Pool E in some classifications at the Paloma Mizuho Rugby Stadium. In match number one, India was handed a defeat by Hong Kong China 33-7, while in match number two, India was handed a defeat by People's Republic of China 43-5.
0: और अब पदक तालिका की ताजा स्थिति शाहिद आजमी से
2: एशियन गेम्स 2026 में भारत के खाते में अब तक 10 स्वर्ण 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदक हैं और भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है वहीं मेडल टेबल पर चीन 154 स्वर्ण समेत 288 पदकों के साथ पहले जापान 59 स्वर्ण समेत 217 पदकों के साथ दूसरे और दक्षिण कोरिया 30 स्वर्ण समेत 113 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है
0: ये एशियाई खेल अपने समापन की ओर बढ़ चले हैं ज्यादा दिन नहीं बचे हैं लेकिन अभी भी पदकों के लिए पूरी रस्साकशी जारी है वो सवाल जो प्रतियोगिताएं उठाती हैं जिनके जवाब होते हैं स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक पाना उसके लिए जद्दोजहद जारी है और भारतीय खिलाड़ी भी इसमें लगे हुए हैं कल का दिन बहुत खास रहने वाला है क्योंकि महिला हॉकी का फाइनल है सारी निगाहें वही रहेंगी भारत की लड़कियां चीन के विरुद्ध उतरेंगी हॉकी के मैदान पर बहुत शानदार मैच रहेगा ये इसके बारे में जानना हो तो हमारी अपडेट्स आकाशवाणी पे हमारे साथ रखिएगा भारतीय लड़कियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेला है सबसे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से परास्त किया उसके बाद इंडोनेशिया को 17-1 से थाईलैंड को 20-1 से जापान को 3-1 से सिंगापुर को 7-0 से और सेमीफाइनल में कोरिया की मजबूत टीम को 2-0 से परास्त किया था यानी पूरे जोश में होंगी लड़कियां और स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में आना चाहिए कल और 3 स्वर्ण पदक हैं जिन पर भारतीय निगाहें रहेंगी बॉक्सिंग के रिंग में उतरेंगे अंकुश पंघाल परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोहेन। देखते हैं बॉक्सर्स भारत के लिए क्या करके दिखाते हैं। वैसे बॉक्सर्स ने अब तक के इन एशियाई खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, पहले से कहीं बेहतर। अगर प्रदर्शन ऊंचा हुआ है तो बॉक्सिंग वो स्पर्धा है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा करके दिखाया है। कुश्ती में भी कल भारतीय पहलवान बहुत कुछ कर गुजरने की चाह लेकर मैट

0: उतरेंगे। फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल होंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत होंगे 125 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपांशी 50 किलोग्राम भार वर्ग में और प्रिया 76 किलोग्राम भार वर्ग में अपने दांव पेंच दिखाएंगे। तो आर्चरी में रिकर्व टीम की सेमीफाइनल स्पर्धाएं हैं। अंकिता भगत, कीर्ति और कुमकुम खेलेंगी चीन के विरुद्ध। इसके अलावा केनो स्लालोम में महिला और पुरुष के क्रॉस इंडिविजुअल हैं। साइकिलिंग में महिला ओमनियम, पुरुष काइरिन और पुरुष मेडिसन की प्रतियोगिता होगी। गोल्फ में पुरुष टीम राउंड 3 में खेलेगी और इसके अलावा इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले महिला और पुरुष का जारी रहेगा। रग्बी 7 में मलेशिया के विरुद्ध मैच होगा। सेपक टोकरा में महिला क्वाड्रेंट के मुकाबले होंगे। ताइक्वांडो में कशिश मलिक उतरेंगी। और अब समय आ पहुंचा है विदा लेने का। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह 9:30 बजे से FM रेनबो पर नियमित अपडेट्स सुनना मत भूलिएगा और रात 10 बजे हमारा ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो फिलहाल मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। उधर पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद लेकर प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी बारिपदा स्टूडियो घर रे समय वर्तमान राति 11:05। श्रोता बंधु शुणु आगामी आम केन्द्र प्रचार होगा केतोटी कार्यक्रम संपर्क में सूचना आसंका सका 6:05 शुणीपारे भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना सका 7:00 आम केन्द्र प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क में सूचना सांताली आखड़ा प्रचारित हे सका 7:25 गीतांजलि शुणीपारे सका 8:15 दिन 12:00 कार्यक्रम चहला संध्या 6:00 कार्यक्रम भक्ति गीत आदिवासी संगीतर कार्यक्रम शुणीपारे राति 7:00 चाषी भाई निमन्ते कार्यक्रम चाषवास प्रचारित हे राति 7:30 आपण मान अनुरोध में ओडिया कथचित्र गीत शुणीपारे राति 8:00 श्रोता बंधु शुणिले आगामी आम केन्द्र प्रचार होगा केतोटी कार्यक्रम संपर्क में सूचना एथसहित शेष करुछु आज अधिवेशन पुणि थरे आपण अभिवादन जणाइबु आगामी प्रातः 5:53 सेतेबेला पर्यंत शुभरात्रि सह विदाय नेउछु जय हिंद।